0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जायथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जायछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ଆପଣମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ମୁକେଶ କୁମାର ବଲ। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी

दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग ट्यून कर चुके 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक कृतिबो मित्र आशा अपन सहित किसी मॉर्निंग अपडेट को नहीं कि ये आज जेहतु सोमवार रही 20 जुलाई आज प्रथम तो आम पापाग विषय जाणि रखा आज कटक आकाश टी मेघुआ रहा संगे संगे मध्य वर्षा और वज्रपात संभावना रही बाहर को बाहर निज सहित छता कि रेनिकोट सांगे नहीं जातु जेहेतु रास्ता टिके कच्चा थी बा, तो ए समय रे निहाते भावरे जानवाहन धीरे चलांतो आ ट्राफिक अपडेट विषय जदि कहबी सकाळर ऑफिस समय रे बादामबाड़ी लिंक रोड चंडी छक दोलमुंडी मधुपटना अंचल

0: सर्वान् राजनैतिकदलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुखविषयेषु रचनात्मक चर्चासु भागग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी

Hey friends, good morning. You are listening to 100.4 Akashvani FM Rainbow. Kadak dil se dil tak, kon dil se dil tak, kada wo mitra aasha apanko sahito show arambh hoi jaichi. Subha sakal ra sa samastanga pai sakal ti subhamay ho munihati bhavare kahibi. And hum aaj ami emiti gote katha baku jauche jaha pray ama samastanga jibon sahita charita. आमे सब बले परिवार पाई, बंधुमानों का पाई, निजा ऑफिस कामों पाई, निजा पिलामानों का पाई, समस्तों को पाई समय बाहर करो। किंतु सिस्टर थरा किबे अपनो निजो पाई किचे समय रखे थिले। आइना अगरे ठिया ही निजो को पचारी थिले मुँह के मिति अच्छी।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଉପଚାର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1455 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
4: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा

0: बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
2: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
3: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
2: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों

0: बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था, जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही

0: आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi Police has clarified that no permission has been sought.

सुनिश्चय प्रमाण दिव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल ताकि ये सो स्टार्ट मॉर्निंग मेलोडी रा सकाल जी हस मजा आ फिल्म मसला रो आरंभ हुए तबे दिन स्पेशल हो जाए तेणु आज मुझे किसी बॉलीवुड ओटीटी तारका थिएटर आरंभ कर ओटीटी पर्यंत क्यों फिल्म चली वेब सीरीज एवं ट्रेंड करमा को सिनेमा आपण वीकेंड वॉचलिस्ट कर देखिपारे से कथा सब मुझे कह सिनेमा प्रेमी मस बहुत रोमांचकर रही कारण सब अधिक चर्चा रही अल्फा यस YRF स्पाय यूनिवर्स फिल्म रे आलिया भट्ट एवं सर्बरी मुख्य भूमिका नहीं नजर आसी एक्शन स्पाय थ्रिल एवं बड़ परिसर रो विजुअल एहा को चर्चा रे रखी एवं अल्फा एबे रेकर्ड मध्य क्रिएट कर खाली से नुह कॉमेडी प्रेमी को पाई रही धमाल 4 एहा मध्य दर्शकों को हसौछि अजय देवगन रितेश देशमुख एवं अर्शद वर्सी मस्ती पुणि थरे बड़ परदा को फेरी एवं ओटीटी वॉचलिस्ट रे आपण कण कण देखिपारे से विषय निहाती कहिपारे जदि आपण घरे बसी वीकेंड विंस करबा को भल पांदी तबे एही सप्ताह रे ओटीटी रे मध्य अनेक नुआ कंटेंट आसी जेमिति कि सामंतक अभिनीत चर्चित थ्रिलर आसी मा इंटी बंगाराम एवं ता सहित द ईस्ट पैलेस मध्य आसी एक नुआ के ड्रामा फैंटेसी सीरीज आसी हार्ट स्टॉप फॉर एवर लोकप्रिय रोमांटिक कहानी रा फिनाले आसी खाली से नुह एबे कथा तो एबे कथा आगामी बड़ बड़ रिलीज रो कथा मध्य आपन को कहि दउछि आसंता किछि सप्ताह रे आसी जइबो रफ्तार द इंडियन स्टोरी एवं तेरा यार हूं मैं परी हिंदी रो बड़ बड़ फिल्म बड़ परदरे आपण माने देखिबा को पाइबे खाली से नुह से सनी देओल कर मध्य आसुचि बटवारा 1947 अगस्त मुक्ति पाइबा को प्रस्तुत रहुचि बटवारा 1947 निहाती भावारे अगस्त रे समस्ते बटवारा सनी देओल कर देखिबा को निहाती जिपे तेबे आपण फेवरेट बॉलीवुड मूवी कौन आपण जो वीकेंड गला से वीकेंड रे निहाती भाव रे बहुत ओटीटी सीरीज देखी थे घर तेरे आपण कौन कौन ओटीटी सब सीरीज देखी कहवाक गले सिनेमा केवल मनोरंजन नुहे यह केतबेले हसाए केतबेले कंदाए और केतबेले नुआ स्वप्न देखाए तेणु समय मिलले परिवार किंबा बंधु मानक सह गोटे फिल्म किंबा सीरीज निहाती भाव रे देखंतु

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 7 1 8 जोगाजोग करंतु।

0: हेलो
1: आज्ञा दीदी
0: नमस्कार के कहते कौट कहते
1: दीदी कटक रु ममता बेहरा कहती
0: अच्छा
1: दीदी
0: बहुत भल अच्छी अच्छा ममता कही दिखे आपण घरे किए ओडिया हो कि हिंदी रो पुराणा गीत शुणा को बहुत भल पाते
1: दीदी आम समस्त ओडिया हिंदी सब मानते पुराणा गीत शुणा बहुत भल पाऊ
0: अच्छा मानते 2000 मसीह गीत पाखापाखि गीत भल लगे ना आप नाइंटीज मानते 90 दशक जो सब गीत अच्छे से सब
1: शुणा बहुत पुराना गीत आमको बहुत भल लगे हिंदी ओडिया बहुत भल लगे
0: अच्छा घरे एमती किए अच्छा जे पूरा मानते पुराणा गीत शुणापी पूरा पगल से किए समस्त भितर
1: दीदी आम मिलेम बहुत पुराणा गीत शुणा भजन ये मानते शुणा बहुत ये
0: अच्छा कि माँ ना कौन ना
1: दीदी माँ सात वर्ष होगा
0: किंतु आपण माने जेबे भी पुराणा गीत शुणुथिबे सेबे मांग स्मृति आपणक पाखरे रहउथिबो गीतरे अनेक स्मृति रहिताय तो आपण एमती मांग स्मृति साउंड अंतु पुराणा गीत माध्यमरे बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करथिबार
1: आज्ञा दीदी गोटे पुराणा भल गीत
0: निहाति भाबरे गोटे सुंदर गीत मु आपणक शुणै देबे
1: आज्ञा रहिलि दीदी नमस्कार
0: नमस्कार आपण भी कॉल कर परबे अन द नंबर 0671230353 रे एवं शेयर कर परबे आपण को कहानी मो सहित चलन देखिवा निजो कहानी बांटिबा पाए नेक्स्ट के अछंती कॉलर हेलो
2: हेलो
0: गुड मॉर्निंग के कहउछंती कोठ कहउछंती
2: आ देव

Thank you.

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक एंड दिल से दिल तक रिदव मित्र आज आपनक सहित. नेक्स्ट एसएमएस हमें भेज रहे हैं मानसी, अनिल, गौरव, कविता अरोरा, गांधी मार्ग करमपुरा न्यू दिल्ली से आ रहा है ये मैसेज. और उनका फरमाइश है मोहरा से टिप टिप बरसा पानी, क्योंकि आज दिल्ली का मौसम थोड़ा कूल है इसीलिए वो सुनना चाहते हैं टिप टिप बरसा पानी. जरूर आपके फरमाइश हम पूरा करेंगे. ठीक ए सॉन्ग रो रिक्वेस्ट मध्य आउ जने देछंती निहाती भाबरे तांका नाम मध्य मो जने रखिबे. से होछंती प्रमोद कुमार साहू ढिया साही कादोपडा जगत सिंहपुर रु. से मध्य मोहरा रु टिप टिप बरसा पानी सुनिबा को चाहिछंती. निहाती भाबरे तांका मनपसंद रो गीत एवं दिल्ली रो ई फरमाइश सॉन्ग मु निहाती भाबरे सुनेबी. नेक्स्ट फरमाइश सॉन्ग किया कोटु पटी छंती एवं कोन सुनिबा को चाहिछंती चलो देखिबा. एही एसएमएस करूछंती हालु भाई सेयाण आठगढ़ रु एवं लिखुचंती जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग नमस्कार देव मित्र अपा. आज सकाळ आपनकर प्रेजेंटेशन बहुत भल लागिला अपा. आज डेरी रे हेले भी एही सॉन्ग टी मने पड़ला तेनो एही पुरुना गीत टी निहाती भापरे सुनेबे. निहाती भापरे आपनका मनपसंद रो गीत म आपनका सुनेबी. तो रास्ते रे सुनिबा को चाहिचंती चुपके सारी गीत टी को सुनिबा को चाहिचंती मोहम्मद रफी को कंट्री. निहाती भापरे ब्यूटीफुल से गीत म आपनको श्योर भेटी देबी. ताले चलो तो बिल्कुल भी लेट न करी सुनिनबा बैक टू बैक एही दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को.

अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। ये फरमाइश आ रहा है हमें दतरंगी भाटपरा छत्तीसगढ़ से, और हमें लिख रहे हैं ये मिसेज हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा एवं निखिलाल वर्मा, और उनका फरमाइश गाना है फिल्म आप आए बाहर आए 1971 से, एक मशहूर गाना है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये सुंदर सा गाना आप सभी के लिए, तो चलिए सुनते हैं साथ मिलकर ये सुंदर सा गाना।

0: प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजनार यूएल मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रु मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 7 1 8 रे जोगाजोग करंतु।

ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानक सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसीहा खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराइ परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एहि शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

जी हम बॉलीवुड ट्रेल्स पे अब वो मौका वो पल आ चुका है जब हम आपको क्या मौका देने वाले हैं, बॉलीवुड सरताज बनने का मौका देने वाले हैं। पूछने वाले हैं आपसे एक सवाल, हमारे जो पुराने सुनने वाले हैं वो तो तैयार बैठे होंगे अपने अपने फोन्स के साथ कि कौन सा सवाल है, और सबसे पहले जवाब पहुंचाने के लिए उन्हें नंबर भी हमें पता है, लेकिन नए जुड़ने वालों को बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 पर, जिसमें अब जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं उसका सही जवाब आपको हम तक पहुंचाना है। तो सवाल पेश है कि अहान शेट्टी की लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी बॉलीवुड में उसका क्या नाम है। हमने आपको बताया था कि विक्रम भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट में वो हिस्सा लेने वाले हैं, अहान शेट्टी की एंट्री हो गई, वो तो खैर फिल्म अभी बनेगी, लेकिन लास्ट टाइम बॉलीवुड स्क्रीन पर अहान शेट्टी किस फिल्म के साथ आए थे, उनकी इस फिल्म का नाम क्या है। हिंट आपको दे देती हूं, जनवरी में इसी साल रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में अहान ने इंडियन नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया था, बहुत तारीफ हुई थी। एक और हिंट चाहिए क्या? अच्छा दे ही देती हूँ। और अगला हिंट यह है कि इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल थे, दिलजीत दोसांझ थे, वरुण धवन भी थे। तो बताइए मुझे अहान शेट्टी की इसी साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: और इसी के साथ आ जाता है वो पल जिसमें हम आपका आज का बॉलीवुड सरताज कौन बन रहा है वो अनाउंस करने वाले हैं। एक बार फिर से बता देते हैं आपको अपना सवाल आज का था कि अहान शेट्टी की उस फिल्म का नाम बताइए जो इसी साल जनवरी के महीने में रिलीज हुई थी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपके बहुत से सही जवाब आए हैं और बहुत से गलत जवाब भी आए हैं, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है बॉर्डर टू बताकर आज के प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं सुखलाल बाला, जो कि वेस्ट बंगाल से हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत बधाई हो आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए सुखलाल बाला साहब को। जी हाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। उन सभी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। तरुण कोहली साहब ने मेरठ से हम तक सही जवाब पहुंचाया है। सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब आया है। इसके अलावा अनूप साहू ने हम तक मैसेज किया है। भावना शालीमार बाग से हमसे जुड़ी हैं, बॉर्डर टू कहने वाले हैं। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, निकिता पारेकर पुणे से, धर्म भाटिया जी, बसंत तोमर, हरीश गौड़ साहब बॉर्डर टू के साथ, खन्ना साहब अम्बाला से हमसे जुड़े हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। राजकुमार के संतानी साहब, मोनिश इद्रिसी गुजरात से, दीप्ति, नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से, इसके अलावा इंडियन आर्मी से मोहित है। ऑल राइट, बॉर्डर टू इस सवाल का सही जवाब है। अगला मैसेज हम तक रवि जोशी साहब का मेरठ से आया है। फुरकान साहब का सही जवाब आया है, बॉर्डर टू के साथ कहने वाले हैं। उमेश कुमार साहब जिन्होंने हम तक इस सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन आज के प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से।
1: बाग बहारा मेरा यारा,
0: बॉर्डर टू से ये ट्रैक आपके लिए।

और इसी के साथ बॉलीवुड टेल्स में मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा। कुछ ही मिनटों में 12:02 पर पूजा आनंद आपके साथ रहेंगी प्लेट कूल लेकर। 1:02 पर रेनबो हेल्पलाइन में मैं ही आपके साथ रूबरू होंगी और आज हम बात करेंगे सूखे की तैयारी के बारे में, ड्रॉट प्रिपेयरनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस। हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर एनएचओडी हैं एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा आशियाना प्रोग्राम में 2:02 पर शालिनी खंडेलवाल रहेंगी आपके साथ। और रेडियो डॉक्टर में दोपहर बाद 3:00 आज बात होगी डीलिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्पाइन सर्जन कम यूनिट चीफ हैं आईएसआईसी, और डॉक्टर ओमिर अहमद खान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में इस विषय में जानकारी देंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, प्रस्तुत है अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसे पहले हंगामा

सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशनाव में मोल्डोवा के राष्ट्रपति मायो संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ये योजना 1 जुलाई से पंजाब में लागू हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानी खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रन से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि पानी जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। आप भी यही मानते हैं ना? आज यही अमूल्य जल हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। देश के कितने ही हिस्से हैं जहां बारिश की कमी है, कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं ग्राउंड लेवल वाटर लगातार नीचे होता जा रहा है। सूखा केवल पानी की कमी का नाम नहीं है, ये खेती, एनवायरमेंट, समाज, आप पर, हम पर, सभी पर गहरा प्रभाव डालता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल बारिश का इंतजार करें या फिर आज से ही ऐसी तैयारियां शुरू कर दें कि पानी की कमी का डटकर मुकाबला किया जा सके। रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारा टॉपिक है ड्रॉट प्रेपरेशंस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस, यानी कि सूखे से निपटने की तैयारी और उससे उबरने की सामुदायिक क्षमता। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन पर उपस्थित रहेंगे श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर हैं, एचओडी हैं एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। और आप उनसे सूखे से निपटने की तैयारी में आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, जिस पर आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800111026, जिस पर आप हमें फोन करके अपने सवालों को श्री वत्स भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण एस वत्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं रेनबो हेल्पलाइन में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे ख्याल से

उन तक हमारी आवाज जो है अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम जरूर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि सूखे से निपटने की तैयारियां जिस पर हम सोचते हैं कि शायद आपका और हम कर क्या सकते हैं, ये तो सरकारों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिटीज सामुदायिक रूप पर एक से एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगी तो जरूर सूखे से निपटने में का हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं। यही रेनबो हेल्पलाइन पर आज का विषय है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं।

0: रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है सूखे से बचाव की और पानी की सुरक्षा की। पानी जिसकी बूंद बूंद कीमती है और पानी की कमी से बचने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी यानी कि पूरे समाज की तैयारी की जरूरत है। ड्राउट प्रिपेयर्डनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस, यही हमारा आज का विषय है, सूखे से निपटने की तैयारी और उससे निपटने की सामुदायिक क्षमता। श्री कृष्ण एस वत्स साहब जो कि मेंबर हैं और एचओडी हैं एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ फोन पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
1: अभी थोड़ा और थोड़ा अगर थोड़ी
0: जी जी
1: धीरे आ रही, काफी आवाज धीरे आ रही है थोड़ा।

0: अच्छा अच्छा मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करती हूँ, लेकिन पहला सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि
1: मेरी आवाज आ रही है आप तक?
0: मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है।
1: अच्छा ठीक।
0: तो जी आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो सूखे की स्थिति है देश में वर्तमान, मानसून आ चुका है यूं तो, लेकिन सूखे की स्थिति क्या है ये आपसे जानना चाहूंगी। पहला सवाल तो मेरा यही होगा।
1: इस वर्ष देश में एलनीनियो का प्रभाव के बारे में एक साधारण अनुमान था
0: जी।
1: भारतीय मौसम विभाग है, जो हमारी जो केंद्रीय अर्ली वार्निंग एजेंसी है, इन्होंने ऐसा कहा था कि देश में इस साल बारिश कम होने की संभावना है, क्योंकि एलनीनियो का प्रभाव देश पर रहेगा। और जो अभी तक स्थिति बनी है उसमें वह दिख रहा है कि बारिश जो है अपेक्षा के हिसाब से कम हुआ है
0: जी।
1: तो एक तो जून में बारिश कम हो गई थी, काफी करीब करीब 30% बारिश कम हुई जून में। जून में मानसून का आगमन होता है, तो जितनी बारिश की अपेक्षा थी जून में उससे 30% कम हुई है, लेकिन जुलाई में बारिश का परिमाण जो है वो बढ़ गया है। और वो जो है जो सूखे की स्थिति थी उसमें कुछ कमी आई है। फिर भी पूरे देश में जो है, पूरे देश को अगर देखें तो जो अपेक्षा के हिसाब से 24% बारिश कम हुई है, उसका ज्यादा असर जो है सो पूर्व और जो उत्तर पूर्व के राज्यों में है, वहाँ करीब करीब 35% की कमी है। फिर जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ भी 23% कमी है, जो दक्षिण राज्य है उसमें 27% की कमी है, और केंद्रीय भाग है उसमें 14% की कमी है। तो कुल मिला जुला करके देश में जो है अपेक्षा से 24% बारिश कम हुआ है। और हालांकि जुलाई में काफी बारिश हुई है, और जुलाई में जो बारिश हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो है फसलों की बुआई का काम भी शुरू हो गया है, और स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी जैसा कहा गया अपेक्षा से कम बारिश हुई है, और इसका ना परिणाम पानी की जो स्थिति है उस पर जरूर होगा।
0: जी जी हमारे जो श्रोतागण हैं उनके सवाल भी हम तक आने शुरू हो गए हैं सर। तो एक तो सवाल ये हो रहा है कि भाई सूखे का जो असर है वो किसानों पर तो यकीनन पड़ता ही है, लेकिन आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम इसके लिए क्या योगदान कर सकते हैं, आम नागरिक जो है वो क्या योगदान कर सकता है?
1: देखिए आम आदमी जब बारिश कम होती है तो पानी की उपलब्धता पर उसका सीधा उससे प्रभावित होते हैं। तो एक तो होता है कि हमारे जो जलाशय हैं, बड़े जलाशयों में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, उसके कारण जो जल आपूर्ति है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। हमारे राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का यह पूरा प्रयास रहता है कि इन जलाशयों में जो पानी की व्यवस्था है उसको हम अच्छे से उसको रैशनलाइज करके जो जल आपूर्ति है उस पर कोई असर ना आए, और इसके लिए हम जो आवश्यक व्यवस्था करें, जल का जितना ज्यादा से ज्यादा है उसको हम स्टोर करें, और जो सरफेस वाटर है, जो सतह पर जो पानी रहता है उसको हम अच्छे से उसको कंजर्व करें, उसका सदुपयोग करें, तो पानी की जो स्थिति है वो पानी आपूर्ति की जो स्थिति है वह ठीक ठाक बनी रहती है। नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि जो पानी उपलब्ध होता है उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करें, पानी का दुरुपयोग ना करें, और है ना जब ऐसी स्थिति आ गई है कि जहां बारिश कम हो रही है तो जो पानी का संग्रह है उसको ध्यान में रखते हुए हम पानी कम खर्च करें, उसमें मितव्ययता बरतें।
0: जी जी कुछ ऐसा ही सवाल राजेश यादव साहब का कानपुर

0: से हम तक आया है और वो ये कहते हैं कि अगर किसी कॉलोनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो ऐसे में हम इस विषय के संबंध में क्या कर सकते हैं?
1: तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है तो एक तो करनी चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा यह है कि कम से कम वो इस तरह से हम करें कि जो जो पानी आपके कॉलोनी में आ रहा है उसको जमीन के अंदर तक जाने दें, वो आपकी कॉलोनी से बाहर ना निकल जाए ना, पानी को रोकना और रोक करके जो जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, जो जल के अंदर जो पानी का सतह है उसको हम कैसे ज्यादा ऊंचा कर सके, पानी का ज्यादा दुरुपयोग जो है हम बोरवेल के माध्यम से जो पानी ज्यादा ना निकालें, पानी का सतह को बनाए रखें, तो इसके कारण जो है वो पानी का स्तर जो है वो बढ़ता रहेगा, जो जमीन के अंदर जो पानी है जिस पर हम काफी कुछ निर्भर करते हैं वह जब वह बना रहता है और उसके कारण जो है पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। तो एक तो कि पानी का हम ठीक से इस्तेमाल करें, दूसरा जो पानी जमीन के अंदर जाने दें, और तीसरा यह कि बोरवेल के माध्यम से हम पानी को ज्यादा ना निकालें। तो ये तीनों अगर हम करेंगे तो पानी का सतह बना रहेगा, व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक स्तर पर हमारी हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर करें, कंजर्व करें
0: जी।
1: और उसका सही इस्तेमाल करें
0: जी। सूखे से निपटने की तैयारियां, यही रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है और सूखे से निपटने की तैयारी केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। हम आज ये बात कर रहे हैं कि आप और हम मिलकर इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण एस वस, जो कि मेंबर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हमारे साथ फोन पर उपलब्ध हैं। आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। इस पर आपकी क्वेरीज जो हैं आप हम तक पहुंचाइए और मेरे माध्यम से पहुंचेंगी श्री कृष्ण एस वत साहब तक, और आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के प्रोग्राम में जरूर मिलेगा और साथ ही साथ हमें बहुत सी वो टिप्स भी मिलेंगी जिससे हम सामुदायिक रूप से जल संरक्षण को कर सकते हैं। श्री वत साहब जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक मैं ले रही हूं और फिर आपसे बातचीत करूंगी।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि बदलता मौसम, घटती बारिश और पानी की बढ़ती मांग, ये सिग्नल है कि वाटर कंजर्वेशन जो है केवल ऑप्शन नहीं है, जरूरत है आज की। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम यही समझ रहे हैं कि सूखे से निपटने की तैयारियां पहले ही कैसे की जाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, और ऐसे में आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है, सामुदायिक रूप से आप और हम क्या कर सकते हैं जल संरक्षण के लिए। हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री कृष्ण एस वत्स साहब फोन पर उपस्थित हैं, और आप मेंबर और HOD हैं NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। और सर, बहुत से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, नए जुड़ने वालों को बता देते हैं 9868107070 हमारा वो नंबर है जिस पर आप अपने सवालों को, सूखे से निपटने की तैयारी में आप और हम क्या कर सकते हैं इस विषय में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हम तक पहुंचाइए। फिलहाल सर, पशुओं के लिए पानी की बहुत कमी हो जाती है जब तेज गर्मी होती है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है?
3: एक तो कि पशुओं के लिए पानी की अलग से व्यवस्था थोड़ी करनी चाहिए, और वो उसके लिए जो है आप जलाशयों का उपयोग कर सकते हैं, और वहां से एक जब कभी सामुदायिक स्तर पर भी मान लीजिए अगर सारे पशुओं के लिए पानी लाया जा सकता है और उनको पानी दिया जा सकता है, तो एक तो पशुओं को और पानी के अलावा फॉडर की भी जरूरत होती है, और सूखे में अक्सर जो है ना चारे का भी की भी किल्लत होती है, चारे की भी आवश्यकता होती है, तो चारे के लिए एक अलग से वो हमें बुआई करनी चाहिए, चारे का एक अलग से अभियान करना चाहिए ताकि चारा उपलब्ध हो। पशुओं के स्वास्थ्य की हमें सरकार की भी चिंता रहती है, और सरकार इसके लिए ढेर सारे कदम

0: उठाती है, कई जगह चारे की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है, तो आप सरकार से भी हम सब संपर्क कर सकते हैं कि चारे की व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा की जा सके और चारे के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था की जा सके, सामुदायिक व्यवस्था की जा सके ताकि हम अपने पशुओं को बचा सकें।
1: जी जी।
0: तो यह तो पशुओं के लिए है, किसानों के लिए भी जो किसान हैं और वो अपनी बुआई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या है, तो वो जो वैकल्पिक जो क्रॉप्स हैं, वैकल्पिक फसल वो ले सकते हैं, दलहन तिलहन ये जो सारे जो है जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है तो ऐसे फसलों को लगा सकते हैं। जब ऐसे फसल लगाते हैं तो हमें इससे हमें चारे में भी मदद मिलती है, इन फसलों का बाद में चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब एक वैकल्पिक कृषि व्यवस्था की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम सरकार जो है एडवाइजरी इश्यू करती है और यह अपेक्षा रहती है कि थोड़ा अगर पानी कम हो रहा हो तो धान जैसे जो है ना जो फसल है जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता है वो थोड़ा कम करें, और ऐसे फसल जहां पानी की कम आवश्यकता होती है वो ऐसे फसल लें। तो एक पूरी कृषि व्यवस्था की बात हम यहाँ कर रहे हैं जिसमें फसलों को अच्छी तरह से हम उसका ये कर सके, एक वैकल्पिक फसल की व्यवस्था कर सके और पशुओं की व्यवस्था कर सके।
1: जी, पैंथर तोमर साहब का किशनगंज दिल्ली से हम तक सवाल पहुंचा है और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस तरह के सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो कुछ तो आपने खैर अभी मेंशन ही किया है।
0: जी, एक जी। तो कृषि विषय जहां आप कई किसानों को बीज की आवश्यकता होती है तो वो बीज दिए जाते हैं क्योंकि उनको फिर से बुआई करनी पड़ती है, तो वो सीड्स की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा जो है कि आप ना किस तरह से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें और जरूरत पड़ने पर हम किसानों के लिए बिजली की भी व्यवस्था कर सकें ताकि वो ना अपना बोरवेल चला सकें, लेकिन ये सब कुछ हमें एक संतुलन के साथ करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने कहा जैसे कि पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था वो जरूरी होती है, और फिर जो है कि हम जो लोगों के पानी की व्यवस्था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो प्राथमिकता होती है, बहुत ही आवश्यक प्राथमिकता होती है, और जहां कहीं भी गांव में इस तरह की पानी की दिक्कतें आती है वहां सरकार टैंकर्स की व्यवस्था करती है और टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें होती हैं और साथ साथ है ना हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि सबों को है ना बिजली की आपूर्ति हो, और जबकि बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ता है लेकिन फिर भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक बिजली मिल सके।
1: जी।
0: तो ये सारी बातें हम सरकार का जो जो सूखे के लिए जो व्यवस्था की जाती है इसमें अंतर्भाव होता है।
1: जी, एक और प्रश्न आया है सर कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या सूखा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय में?
0: जो स्कूल के स्तर पर जल की व्यवस्था के लिए काफी कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है, तो जब भी हम जल की व्यवस्था की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें वो सूखे की बात आ ही जाती है क्योंकि हम जल का उपयोग ठीक से कर सकें, हम जो भूजल है जो ग्राउंड वाटर है उसका हम ठीक ठाक से इस्तेमाल करें, उसका ज्यादा ना अतिरिक्त दोहन ना करें, है ना, वो बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे जलाशयों में पानी है उसको हम अच्छे से उसका हम संग्रह कर सकें, उसको हम बढ़ा सकें, और ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, तो इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, और अगर वो पानी की जो व्यवस्था है इसके बारे में उनको जानकारी

0: जारी हो, इनके बारे में एक जो एक कॉन्शियसनेस है ना, वो अगर उत्पन्न हो जाए तो वो आदमी के साथ वो सारी बातें जीवन भर साथ चलती है।
1: जी जी, हर्षवर्धन साहब दिल्ली से हमसे जुड़े हैं और उनका मैसेज सर ये है कि दो प्रश्न इनके हैं। एक तो ये कहना चाहते हैं कि सूखे को आपदा कब माना जाता है, कब वो आपदा में परिवर्तित होता है?
0: देखिए, जब है ना, मान लीजिए कि अगर 20% से कम पानी होगा है, जो हमारा जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 20% से कम पानी हुआ हो, अगर वो सिंचित प्रदेश ना हो, अगर वो वहां पर जो बुआई की स्थिति काफी कमजोर हो, और अगर फिर जो वेजिटेशन इंडेक्स होता है कि वहां पर जो है ना वेजिटेशन की स्थिति है तो वो उसमें काफी कुछ ह्रास हो, तो इन सारी चीजों को हम एक इकट्ठे ला करके उसको देखते हैं, उसके बाद वो सूखे को हम घोषित करते हैं, सूखा घोषित करते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये कई कई जो है पहलू हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए सूखे की घोषणा होती है।
1: जी, और इन्हीं का दूसरा प्रश्न सर ये है कि अगर किसी राज्य में सूखे की स्थिति घोषित हो जाती है तब NDMA, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसीज जो हैं किस तरह से समन्वय और राहत प्रबंधन का काम करती हैं?
0: तो कई चीजों पर काम होता है। एक तो ना जो लोगों को जो सीरियल्स होते हैं ना, फूड फूड फूड की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था, तो उसके तहत सरकार सबों को है ना राशन कार्ड के आधार पर वो खाद्य पद ये तो चावल दाल इन सारी चीजों की वितरण की व्यवस्था तो होती ही होती है। इसके साथ साथ हम पानी की आपूर्ति की व्यवस्था, पशुओं के लिए अलग व्यवस्था, फिर जो कृषि का जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो मतलब अगर किसानों को किस तरह की मदद दी जाए, खास करके ना सीड्स के लिए, बीज के लिए, तो वो बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर अगर कृषि पर थोड़ी सी संकट आ गया और लोगों को काम नहीं मिल रहा है कृषि क्षेत्र में, तो फिर वो हम जैसे कि ना राज्य गांव के स्तर पर जो किस तरह से नए काम शुरू किए जाए जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, तो वो रोजगार की भी योजना सरकार करती है। तो रोजगार, पानी, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, और किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं ताकि उन पर ज्यादा भार न पड़े, तो ये सारी चीजें हम सूखे के अंतर्गत करते हैं।
1: जी जी, एक और प्रश्न आ रहा है कि सर क्या आजकल कुछ ऐसी प्रणालियां या तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे सूखे की संभावना का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके?
0: इस बार भी सूखे का जो अनुमान है वो पहले ही से लगा था, मतलब हम इसको अप्रैल और से ही हम मार्च अप्रैल से ही हम इसको इसका इसको मॉनिटर कर रहे हैं
1: जी।
0: और हमें इस साल इस अपेक्षा थी कि इस बार जो एल नीनो का जो प्रभाव पड़ेगा उसके कारण जितनी अपेक्षा है उससे कम बारिश होगी, जो औसत है हमारा बारिश का जो औसत है, औसत बारिश का परिमाण है उससे कम होगी, तो उस ना वो जो मॉनिटरिंग है उसके तहत जो हमने आवश्यक कदम लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं।
1: जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। काफी सारे आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं, सूखे से निपटने की तैयारियां और उसे निपटने में जल संरक्षण के लिए आपकी और हमारी भागीदारी कैसी होनी चाहिए, इसी विषय में श्री कृष्ण एस वत्स साहब रेनबो हेल्पलाइन में आज हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। आप मेंबर NHOD हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि चाहे गांव हो या शहर हो, पानी की जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि पानी की कमी जब दस्तक देती है तो उसका घर उसका जो असर है वो आप तक हम तक हर घर तक पहुंचता है। और ऐसे में आप और हम मिलकर कम्युनिटीज मिलकर कैसे जल सुरक्षित भविष्य बना सकती हैं, यही बात हो रही है आज रेनबो हेल्पलाइन पे। हमारे साथ फोन पर उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। और सर, बहुत से सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम तक पहुंच रहे हैं। नए जुड़ने वाले आपको बताई देती हूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और फिलहाल ये सवाल हम तक पहुंचाने वाली हैं मृदुस्मिता, और इनका सर ये कहना है कि जो ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सूखे से ग्रसित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर क्या प्रॉपर इरिगेशन चैनल को प्लेस कर दिया गया है। एक सवाल तो इनका ये है।
1: मैं कर दूं इसका?
0: जी जी बताएं।
1: तो ये है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे

0: सिंचन की व्यवस्था का विस्तार हो रहा है और ये एक साथ संभव नहीं है, लेकिन अगर आप देश में जो जो पूरा क्षेत्र है सिंचन व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे तो हर दशक में इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही हैं और धीरे धीरे सिंचन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नए जलाशय बन रहे हैं और नहरें बन रही हैं और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी करीब करीब मुझे लगता है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें 50% जो है क्षेत्र वहाँ अभी तक वहाँ सिंचन की व्यवस्था नहीं है और वहाँ अभी भी लोग फसल के लिए बारिश पर निर्भर हो रहते हैं
1: जी।
0: तो वहाँ पर जो है वो अगर बारिश कम होती है तो उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव जो है हर साल अब कम होते जा रहा है। जितना जैसे पहले था, पहले 20-25-30% के आसपास ही सिंचन की व्यवस्था थी, आज वो बढ़ करके 40 से ऊपर हो गई है। तो इस पर इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और उसके कारण जो है पानी की जो उपलब्धता है वो सूखा प्रवण क्षेत्रों में वो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि हुई है विगत कुछ वर्षों में
1: जी।
0: और इसके कारण सूखे के प्रभाव में भी कुछ कमी आई।
1: जी जी, इनका एक और सवाल है सर कि इज देयर एनी ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीसीज ऑफ राइस एंड शीट ग्रेन स्ट्रेन जो कि किसानों को सूखे के दौरान
0: है। ऐसा आजकल हमेशा इस बात पर काफी शोध हो रहा है।
1: हाँ, हाँ।
0: और इस तरह के फसलों की व्यवस्था जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, ये इस बात पर हमेशा जोर दिया जा रहा है और जो कृषि संबंधी जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उन्होंने भी इस तरह के जो स्टडी स्पीसीज हैं ना उस पर उनका काफी जोर रहता है। तो ये जो है तो निश्चित रूप से ना जहां पर पानी का कम इस्तेमाल हो ऐसे ऐसे बीजों की ऐसे फसलों के लिए हम सरकार का जोर रहा है।
1: जी जी, सर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका एक कारण कटते हुए जंगल भी हैं, तो इन्हीं का एक तीसरा सवाल ये है कि हम कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि मिट्टी का जो सॉइल मॉइस्चर है उसको कंजर्व किया जा सके।
0: जी, वो बहुत ही आवश्यक है कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं और एक अच्छी बात जो है देश में कि आप अगर पिछले 20 सालों का आंकड़ा देखें तो फॉरेस्ट कवर में लगातार वृद्धि हुई है। तो हमारा फॉरेस्ट कवर जो है तो 33% एक आइडियल कवर होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है अभी। तो ये फॉरेस्ट कवर में के को हमने बनाए रखा है और ये एक हमारी उपलब्धि है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट कवर के साथ साथ हमें अपने वेजिटेशन कवर को बढ़ाना चाहिए, जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें भी हमें वेजिटेशन को और प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लिए भी सरकार ने है ना कई कदम उठाए हैं हाल में, है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम ऐसा एक कैंपेन किया था और इसका काफी अच्छा असर हुआ है। हमने भी काफी है ना कई सारे सरकार की सारी संस्थाओं ने मिलजुल करके ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात की है और उसके लिए अभियान चलाया है। तो एक तरफ फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए और दूसरी तरफ जो है नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी वेजिटेशन कवर बढ़ना चाहिए, ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसके कारण जो है वाटर कंजर्वेशन जो है पानी का संग्रह है उस पर हमारा है ना अच्छा परिणाम पड़ता है।
1: जी, बहुत से सवाल हमारे श्रोताओं के हम तक पहुंच रहे हैं। अनिंदिता सिन्हा, इनका सर ये सवाल है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या सेक्टर्स या पॉपुलेशन ग्रुप हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं ड्राउट के लिए और क्यों, ऐसा क्यों है?
0: वो कुछ एरिया जो है हमारे देश के वो रेन शैडो एरिया में आते हैं जहां मॉनसून का उतना वो आगमन जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है ना। मानसून का जो जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं, कर्नाटक के कुछ भाग हैं, तेलंगाना के कुछ जिले हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं, तो जो मध्यवर्ती देश का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें कई

0: ऐसे हैं जहां पर बारिश का जो परिमाण है वो उतना अच्छा नहीं है, और इसका जो है भौगोलिक स्थिति से इसका संबंध है। तो जो जनरली जो देश में बारिश होता है उसकी अपेक्षा में इन जिलों में कम बारिश होती है, और इसके कारण इन जिलों में सूखे की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन जिलों में हाल में जो सिंचन के लिए सरकार ने व्यवस्था की है उसका भी एक अच्छा असर पड़ा है।
1: जी, नरेश चौहान साहब अजमेर से हमसे जुड़े हैं और इनका ये कहना है कि सर बताएं क्या पुराने तालाबों को या बावड़ियों को पुनर्जीवित करना आज भी उपयोगी होगा, और अगर करना है तो कैसे किया जाए?
0: निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हम पुराने जलाशयों को, तालाबों को, और जो भी लोकल लेवल पर जिस तरह बहुत देश के हर भाग में बहुत तरह के वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें बड़ी विविधता है, तो इन सबको हमें फिर से उनको पुनर्जीवित करना चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं, जो सरकार का जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है ना, वो उस जल संवर्धन कार्यक्रम, उसमें भी इसकी कोशिश की जाती है, और इसकी कोशिश हमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर भी करना चाहिए। जब भी हम जलाशयों का को पुनर्जीवित करते हैं, उनमें पानी धारण की जो जल है उसको उसके धारण करने की क्षमता बढ़ती है, तो उस हिसाब से हमें है ना पानी की उपलब्धता बढ़ती है, और उसका सीधा है ना जो है तो सूखे की स्थिति पर एक अच्छा असर उसका पड़ता है। तो हमें निश्चित रूप से इसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। ये हमारे हमारे धरोहर का भाग है, हमारे जो सामूहिक जो है ना चेतना और हमारी शिक्षा सबका भाग है, तो बहुत ही आवश्यक है कि इसकी ओर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।
1: जी, राजस्थान से ही एक और प्रश्न आया है ओम प्रकाश साहब का बीकानेर से, और वो कहते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग पानी का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं सर?
0: जो भी पानी हो रहा है उसका हम उसको हम रोकें, उसका संवर्धन करें सतह के स्तर पर, भूजल के स्तर पर, तो उससे जो है पानी की उपलब्धता बनी रहती है। कभी कभी हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, और वो जब बहुत नीचे चला जाता है तो फिर उसको निकालने में, क्योंकि पानी अगर है, पानी सीमित है, उसको पानी को बढ़ाने के लिए पानी के संवर्धन की आवश्यकता है। तो आप जो भूजल है, भूजल को आप ज्यादा उसका दोहन ना करें, उसका ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट ना करें, जलाशयों में पानी को रखें, उसका ज्यादा उपयोग मतलब बहुत ज्यादा उपयोग ना करें, तो कम बारिश होने के बाद भी पानी की उपलब्धता बनी रहती है। और ऐसे कुछ गतिविधियां जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो उस गतिविधियों से बचें, जैसे ऐसे फसल ना लें जहां पर कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो। कम पानी वाले जो फसल हैं उनको उस क्षेत्र में हमें ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी, और अंत में सर हमें क्या कहना चाहेंगे आपकी जल संरक्षण के लिए या सूखे से निपटने की तैयारी के लिए?
0: जो अभी जो स्थिति है जिसमें बारिश कम हो रही है, इस पर हम लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम सारे राज्य सरकारों को हमने आगाह किया है और सबको कहा है कि हमें किसी भी तरह की अभाव न हो लोगों के स्तर पर। मतलब वो मैंने कहा जैसे कि है ना चावल दाल और जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए, पानी की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। ये सारी सारे जो एडवाइजरीज हैं ये हम इश्यू कर रहे हैं लगातार, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पानी का सही से सही इस्तेमाल कर सकें। हम जो देश में जो पानी कम हो रहा है उसकी ओर हम निश्चित रूप से अपना ध्यान बना कर रखें, और यह सोचे कि यह जो आज जो स्थिति बनी हुई है इसको निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर नहीं है, वो हम पर भी है और हमारे समाज पर भी है। तो सब मिलजुल करके हम इस स्थिति को अगर हम अच्छे से मुकाबला कर सकें तो देश निश्चित रूप से हमारा निपटने में कामयाब होगा।
1: थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि सूखे से बचाव और पानी के संकट से बचाव के लिए आपकी और हमारी यानी कि सामाजिक भागीदारी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, और सामुदायिक प्रयासों से ये संभव भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
0: थैंक यू।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत में ही विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई रोक दी गई। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा गणराज्य पहुंची।

चिशिनाव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोल्दोवा गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाई पोपसोई ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह

प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए 3रे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और अंत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। और आशियाना में हम बात करते हैं परिवार से जुड़ी हुई। जी हाँ, परिवार के साथ खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और इसीलिए परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को कैसे करें स्ट्रॉन्ग और परिवार से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे संभालें, कैसे उनको हैंडल करें, इन पर बात होती है हमारे इस खास शो में। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अपनी कुछ आदतों को खत्म करते हैं, कुछ नई आदतें डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ हमारा सामंजस्य बना रहे। तो दोस्तों, आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है ना, उसमें कमाई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही जरूरी है उस कमाई का सही प्रबंधन, यानी कि सही मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि इनकम तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद मंथ एंड तक जेब हो जाती है खाली, और उसकी वजह कम कमाई नहीं होती बल्कि बगैर किसी प्लानिंग के खर्च करने की आदत होती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी मुद्दे पर बात की जाए कि और आपको बताया जाए कुछ आसान आदतों के बारे में, जिनसे घर बैठे आप पूरे परिवार का जो वित्तीय प्रबंधन है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बचत भी हो सकती है, जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो भविष्य है ना आपका, आपके परिवार का, वो भी सुरक्षित रह सकता है।

बात कर रहे थे घर की आर्थिक सेहत की। तो अगर आप अपने घर की आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बनाना होगा अपने घर का बजट। होता क्या है ना कि महीने के कुछ खर्चे तो फिक्स होते हैं, चाहे वो राशन की बात हो, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां, ये सब प्रायोरिटीज पे होते हैं और ये फिक्स ही होते हैं। तो आप इन खर्चों के बाद अपने कुछ और खर्चों को तय कर सकते हैं, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या फिर कुछ और आपकी शॉपिंग हो। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा बचा कर रखें, और अगर आपको लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुरुआत में ही उस 20% हिस्से को अलग रखते, जिससे कि आप अपने अंदर अपने आप को फोर्स कर सकें बचत करने के लिए। तो दोस्तों याद रखना होगा कि जो बजट बनाना है वो केवल हिसाब रखना नहीं है बल्कि अपने सपनों को सुरक्षित रखना है।

0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बिल्कुल दोस्तों, ये दिल भी ना कभी कभी नादान हो जाता है जब उसको दिखता है एक आकर्षक ऑफर। जी हाँ, जब हम शॉपिंग करने लगते हैं तो कई बार मार्केट में किसी शोरूम में आकर्षक जो ऑफर देखने को मिलता है तो लगता है कि चलो इसे ले ही लेते हैं, या फिर अगर फोन पर भी स्क्रॉल कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो भी ये जो अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं ना, ये हमको लुभाते हैं, ललचाते हैं कि हम कोई आइटम खरीद ही लें। लेकिन होता क्या है ना कि ऐसे में जब जरूरत नहीं भी होती है वो सामान हम अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं और कभी कभी हम उसका पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि इस आकर्षक ऑफर के दौर में ये बहुत आसान हो गया है। इसलिए जब भी आप कोई भी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो खुद से पहले सवाल पूछें कि क्या वाकई में इस चीज की जरूरत है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप बाजार जा रहे हैं तो उससे पहले एक लिस्ट बना लें जिन भी चीजों की आपको खरीदारी करनी है, जिनकी आपके घर में जरूरत है, उनको लिख लें, लिस्ट बना लें। और हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल उतना ही करें जितना आप समय पर चुका सकें। दोस्तों पता है, अगर समझदारी से आप खर्च करते हैं तो जो घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो बढ़िया रहता है, दुरुस्त रहता है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: सुलाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
3: हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का एफएम रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम
4: क्यों ये कहता है दिल?
3: इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव माला नेगी राजेश कुमार प्रवीण कुमार वीर दमन और ओपी राठौर भी 31 दिसंबर की रात उमंग 2026 में न्यू ईयर पार्टी सिर्फ एफएम रेनबो पर न्यू ईयर स्पेशल उमंग 2026 रात 9 बजे से नए साल तक सिर्फ एफएम रेनबो पर

0: आकाश वाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। बात हो रही है घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोस्तों फाइनेंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए। इसीलिए परिवार के पास एक इमरजेंसी फंड तो जरूर होना चाहिए, लेकिन इस इमरजेंसी फंड के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बचत करनी होगी और ऐसा करना होगा जिससे बचत की आदत डालनी होगी अपने अंदर, जिससे कि आप अपने भविष्य के लिए एक ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करें और आपकी आर्थिक ताकत को बना के रखें, जो परिवार के आपके परिवार के काम आए।
2: One more time.

0: मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत।

और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उस

0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: बस अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो। जी
1: पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
0: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
1: जी
0: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
1: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
0: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
1: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
0: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वम तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
0: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। अब समय हुआ है आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। रेडियो डॉक्टर में आज बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोलिस की।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तर। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का नया दिन, आज का नया रेडियो डॉक्टर और आपका वही पुराना चैनल और वही पुराना समय। जी हाँ।

0: तीन से चार बजे का यह समय होता है रेडियो डॉक्टर का, और रेडियो डॉक्टर में आपको इंतजार होता है कि किस तरह से आज एक नया अंक आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आएगा। तो आज का भी ये अंक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। क्या होती है ये बीमारियां और कैसे इनको जानकर इनसे बचाव किया जा सकता है और उपचार की प्रक्रिया क्या रहती है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के रेडियो डॉक्टर से करा दूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर नंदा। आप सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम।
0: और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेर अहमद खान। आप फिजियोलॉजिस्ट हैं और आप एक रिहैब इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेर जी आपका।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: तो जैसा हमने बताया श्रोताओं को, आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न मेरा कि ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और कुछ और शब्द होते हैं इनसे मिलते जुलते, जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हमें सबके

0: जी आपका
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: तो जैसा हमने बताया श्रोताओं को, आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न मेरा कि ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और कुछ और शब्द होते हैं इनसे मिलते जुलते जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हमें सबके मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। अंकुर सर, आपसे पहले शुरूआत करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो मैंने बहुत अक्सर सुने हैं, पर हमें, हमारे श्रोताओं को भी शायद फर्क नहीं पता होगा, तो शॉर्ट में बता दें।
2: मैम, मुझे लगता है कि ये इस आई थिंक एक घंटे का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो कि अपना डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि सर मुझे स्पॉन्डिलोसिस हो गया। सो आप समझे मैडम, ये अलग अलग शब्द हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक शब्द का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना, जो कि डेफिनेटली उम्र के साथ होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो शब्द है उसका मतलब है जोड़ों का उम्र के साथ खराब होना। अब ये आर्थराइटिस जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये उम्र के साथ होने वाले बदलावों में, जो जोड़ों में बदलाव आता है उसके कारण होने वाला आर्थराइटिस है। तीसरा शब्द आपने कहा स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोसिस आप एक तरीके से इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस है। मतलब कि जब भी हम एक्सरे करते हैं, अगर हमारी उम्र हो रही है थोड़ी 40 वर्ष 50 वर्ष, तो जरूर कोई ना कोई चेंज एक्सरे में दिखेगा, और ये जो एक्सरे में दिखने वाले बदलाव होते हैं इनको स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस या स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दर्द दे ही रहा है। और अच्छा। चौथा शब्द जो आपने कहा स्पॉन्डिलाइटिस, जब भी रीढ़ की हड्डी में कोई पैथोलॉजी हो रही है, चाहे वो सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बारे में फिर और बात करेंगे।
0: जी जी, तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बेसिकली तो हमारा सब्जेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस है, पर मुझे लगता है श्रोता हमसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टो या स्पॉन्डिलाइटिस पर भी सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने आपस में जुड़ते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। डॉक्टर उमेर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम हड्डी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी पर ही ध्यान हमारा जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है रिहैब के लिए फिजियोथेरेपी जब भी हम बोन डिजीज पर बात करते हैं?
1: देखिए, अभी सर ने बताया दो चीजों में डिफरेंस
0: जी,
1: और फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने में इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी मर्ज या कोई भी प्रॉब्लम्स जब होती है तो फंक्शनल एबिलिटीज कम होते हैं, जिसकी वजह से डीकंडीशनिंग इफेक्ट आता है। अब जब ऐसी जब बीमारियां होती है तो मसल्स और बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस ये है कि पहले तो आपका कुछ एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं या फिर डायग्नोसिस के साथ आप इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो प्रोसेस स्लो हो, मसल स्ट्रक्चर्स जो बीमारी होने के वजह से जो हो सकता है जल्दी वो बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्लो डाउन होते हैं या नहीं होते।
0: जी, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक स्पाइन सर्जन है तो उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी जरूर रहता है।
2: जी बिल्कुल मैम, ये टीम है, हमारा काम है सर्जरी करके जो भी हमारा अंग है शरीर का जो ठीक काम नहीं कर रहा है उसे वापस अपनी जगह पर लाकर बिठाना, बट उससे काम निकलवाना और उससे काम ले पाना, ये थेरेपिस्ट जरूर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता
0: है। बिल्कुल, तो ये जोड़ा होता है और ये जोड़ा आज हमारे रेडियो डॉक्टर में भी है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं, उनको यहां सॉल्व कर सके। और हम एक गीत सुन लेते हैं, और यहां पर इस गीत के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पोंडोलोसिस के बारे में। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो
1: मैम नमस्ते, मेरा नाम अनिल कुमार मित्र।

0: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसांतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ତିଲସୀ ସିଲତାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेट से फागुराम यादव, ज्योति

0: यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
0: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चल

0: चलते हैं उस उद्यान की ओर जहाँ दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
4: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
2: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
5: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था। प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है

0: है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।

0: जी पिताजी।
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
0: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
0: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
0: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
0: जी तात।
1: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
0: जी।
1: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
0: जी पिताजी।
1: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उस

0: शख्स श्वेत केतु। जीतात, क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स, जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद

0: का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
1: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
0: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
0: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: सुनिले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। समय हिचे आरंभ करेबा कार्यक्रम मोदेसा।

हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे ऑलरेडी ज्योति असी पहुंचे सारी छी आपनको पाखरे आ आरंभ करबा शो सुरीला आफ्टरनून हां आमो मन भितरे बेले-बेले अनेक कथा रही जाए से कथा आमे जिते चिंता करू सेते कष्ट

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी शुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम ब्रेन बोकाटक दिल से दिल तक। दिल से दिल तक रे शो चली छि सुरीला आफ्टरनून आ सुरीला आफ्टरनून डी ज्योति अछि आपन को सहित। जीवन रे बेले बेले एमिती मोड आसे जेते बेले इच्छा हुई चित्कार करी समस्त पाखरे मो मनर कुह मो मनर दुख मोर अवस्था सबु किछि प्रकाश कर देबा पई, किंतु ता परे एई मन कहे प्रकृतरे कण मोर जहा असुविधा सुविधा मु जो अवस्था रे अछि मु जो परिस्थिति परिवेश दे गति करूछि से कथा कण अन्य माने बुझि परिबे। एई कथा भाबी मन बेले बेले निज भितरे अनेक कथा को चापी रखे आउ सेही अखुआ कथा गुडा को सबु बेले बेले आखि बाट दे लुहधारे ही झरी जाए। बेले बेले जिते कष्ट हेले भी आम मनर कथा आमे काहा पाखरे शेयर करी पारुनी। सब बेले जे मन कष्ट पाए ता नुहे, बेले बेले शरीर भी क्लांत ही पड़े, किंतु आमको कर्तव्य पथरे आगेबक पड़े। देह रेस्ट चाहूथिले भी आमे प्रॉपरली रेस्ट भी नहीं पारुनी, सेटा भी गोटे अद्भुत प्रकार कष्ट जहाँ मन को तो कष्ट दिए शरीर को कष्ट दिए। मानसिक भाव भी आम बहुत भारक्रांत अनुभव करू, किंतु कौन करिबा आग को तो बढ़िबार अछि ना। आम शरीर जंत्रणा जे अन्य माने बुझी पारिबे से कथा भी आम भाविबा बेले बेले भूल ही जाई पारे।

0: प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी।
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 7 1 8 जोगाजोग करंतु।

मेरा सफर एकदम सुहाना, हसी खेली नाची गाई याकु बीतेबाकु ही पड़े, अनेक स्मृति साउंटिबाकु पड़े, अनेक खुशी आउ दुख भितरे सबको निज मन भितरे भाग भाग करी साइती की वन्स अगेन पुणी आगको बढ़िबाकु ही पड़े यार नाही जीवन। ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: हेलो।
1: चिठी मोरोती की चढ़ेई, चिठी मोरोती की चढ़ेई, पुरुती न देली उड़ेई। हेलो
0: हेलो नमस्कार, किए कहते कौटु कहते
1: कौली रेडियो लवर नारायण प्रधान दी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम।
0: बहुत सुंदर भाव निजर इंट्रोटी सुंदर गीत गाइले, तबे कौन कहिबे भाई आज आज टॉपिक विषय प्रथम चिठी कहा पाखकु लिखी थिले?
1: प्रथम चिठी मु देथिली मो बापा पाखकु।
0: आज्ञा।
1: मु सतले बाहर रहउथिली जम्मू काश्मीर रे। आउ सतले माने पोस्ट कार्ड रे मु दा पठो नले इंग्लैंड लेटर मु दा पठथला। आउ जम्मू थिला रे सेट कोन हम बेले सेट फोन रे कथा आसा पे सेट बेले टोटल माने नेटवर्क बंद कर दोंदी बजले कर्फ्यू लागे त हमकु चिठी केवल सहार थाए।
0: निहाती निहाती गोटिए कम्युनिकेशन रो सुविधा से गोटिए चिठी ही थिला।
1: आज्ञा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर सुंदर स्मृति आम सहित शेयर करथिबारु। रहुछे नमस्कार। हेलो
2: अशोक पंडा मधुपाटना कटक
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
2: आज्ञा
0: कौन कहिबे आज टॉपिक विषय प्रथम चिट्ठी कहा पाखु को लिखिथिले?
2: प्रथम चिठी मुझे प्रेमिका पाखु लिखी।
0: बा सुंदर उत्तर देले। आउ रखी से चिठी आपखे आज पर्यटन अच्छी ना तांको पाखे रही है?
2: ये जो चिठी देसी से चिठी एपर्त मो पाखे अच्छी।
0: अच्छा।
2: आ मु मध्य चिठी लिखी से कॉलेज कैरियर से बुद्धि सेमती नाला मु लिखी मेघरात्रि चंद्रिका।
0: बाप रे बाप
2: आरंभ कर देली।
0: जा हो गोटे
2: अनेक चिठी देसी बापा देसी सांग मानक देसी अनेक चिठी लिखी।
0: अच्छा जा हो किंतु प्रथम चिठी बांधवी पाखु लिखी जंती।
2: आज्ञा
0: प्रथम चिठी किंतु बांधवी पाखु लिखी जंती।
2: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
0: बहुत बहुत धन्यवाद निजर गोटे सुंदर एक्सपीरियंस आम सहित शेयर कले। रहुछु नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: तेबे आपण भी जाणीपरिवे निजर प्रथम चिठी कहा पाखकु लेखिथिले नंबर टी हेउछि 0671230315। हेलो
3: हेलो
0: नमस्कार, किए कहउछन्ती कोटु कहउछन्ती?
3: मम नमस्कार जति नमस्कार मु आलोक चंद्र जेना जाइले कोटु कहउछली।
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद मैम।
0: कोन कहिबे आजर टॉपिक विषय रे?
3: टपिक मैडम कहीदे आम घर उपरे चार मगेटी मेघ वर्षा प्रबल डी मारूची।
0: अच्छा।
3: टपिक मु प्रथम चिठी मु तो लिखी पढ़ुली पंचम
0: से
3: मोर बड़ा बाबू भाई आगे आगे गाँव रिओ को भल पाते पाठ पढ़ी नहीं झीटी पांचवास कर ସେ ମୋତେ କୁହେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ମୁଁ କଣ କରେ ଭଲ କଲର ପାନ ପତ୍ର ଧୀର ଚିହ୍ନ
0: ମାରିବ
3: ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପାନ ପତ୍ର ତାକୁ ଆସେ ପାନ ପତ୍ର କେମିତି ହୁଏ?
0: ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କାହା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ
3: ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ।
0: ଆଜ୍ଞା
3: ପାଠପଢା ପାଟି ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ବାପା ରହୁଥିଲେ ଆସାମରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଚିଠିରେ କେମିତି ମାନେ ଚିଠିରେ କେମିତି ଲେଖିଥିଲି ନା ମୋର ପୂଜନୀୟ ବାପା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର କୁମାରରୁ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ମୋର ହୁଏ ତାପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପୁଅ ଆଲୋକ।
0: अच्छा मैंने जो फॉर्मेट रे सीखी चिठी लिखा से सुंदर भाव में बापा चिठी लिखी
3: रिप्लाय दिखती रिप्लाय दिखे सात आठ दिन लगे आसा रिप्लाय
0: अपेक्षा भी करते हैं
3: दूरदर्शन केन्द्र को लिखे आकाशवाणी की लिखे दूरदर्शन चिठी पत्र कार्यक्रम लिखे आकाशवाणी लिखे रेलवे आगे भर्ती होता पुलिस रेलवे विभिन्न जब जो फर्म फिल हुए फर्म पकाए चिठी जो बो लिखे बापा चिठी वेट अनुसार लफा बंद ओजन हुए दाम मरा हुए।
0: अच्छा

0: हेलो
1: हेलो दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, किए कहुचंती? कोठु कहुचंती?
1: मु साई कहुचि बेलपड़ारु।
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत,
1: धन्यवाद।
0: कौन कहिबे साई आजिरो टॉपिक विषय रे?
1: आ मु त माने जेते बेला मोर मोबाइल ता माने हजि जाइतला तो सब

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार किए कहउचंती कोठु कहउचंती
1: प्रथम प्रेम रो प्रथम स्मृति पारु नाही केबे भूली लेखुचि मु प्रेम चिठी चेई चेई सारा राती आखिर निदको भूली तुम आरंभ तुम इति तुमर चांदनी राती तुमर प्रीति प्रेयसी

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार किए कहुचंती कोठु कहुचंती
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार किए कहुचंती कोठु कहुचंती
1: मैडम को

0: हेलो हेलो
1: देखिबाटा मिछ शुणिबाटा गप पढ़िबाकु मना पुरुणा चिठी कथा रखी कथा पछकु लेउटे आणिकि सांगरे अनेक स्मृति। नमस्कार आज्ञा।
0: नमस्कार, के कहुछंती कोठु कहुछंती?
1: मु समीर पंडा कहु।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती

आपको हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

मिलिटरी गार्ड कॉर्प्स इत्यस्य नौसैन्य प्रतिष्ठानानि आसन्। अनेन सैन्य प्रहारेण खोर्मोज नगरस्य कतिपयेषु भागेषु तत्क्षणमेव विद्युत संभरण श्रृंखला बाधिता अभवत्। अपरत्र जॉर्डन देशस्य सर्वकारीय प्रसारण संस्थया सामाजिकान्तर्जालीय पटले निवेदितं यत् तस्य देशस्य वायु प्रतिरक्षा प्रणाल्या ईरान देशात् जॉर्डन भूभागं प्रति प्रक्षिप्तानि त्रीणि क्षेपणास्त्राणि तथैव विनाशितानि। चतुर्थं क्षेपणास्त्रं जॉर्डन देशस्य दक्षिण दूरस्थ क्षेत्रे पतितं, येन कापि जनधनहानिः न जाता। समाचार माध्यमानुसारं एतानि क्षेपणास्त्राणि जॉर्डन देशस्य दक्षिणतटीय नगरे अकाबा इत्यत्र स्थितान अमेरिकी विमानस्थानकान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षिप्तानि आसन्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। इति वार्ताः।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। मौसुमी अधिवेशनर प्रथम दिन में नीट प्रश्नपत्र मामला एवं अन्य प्रसंगक नहीं संसद में विरोधी हट्टगोल जो आसंता पर्यंत उभय गृह मुलतवी। भुवनेश्वर समेत देशर पांचटी स्थान में वृत्तिगत प्रशिक्षण संपर्कित जातीय उत्कर्ष केन्द्र हेब प्रतिष्ठा। लोकसभा सूचना देले विभागीय राष्ट्रमंत्री डॉ सुकांत मजुमदार। पेट्रोल रे 20% रु अधिक इथानल मिश्रण करिबा संपर्कित कौनसी निष्पत्ति एपर्यंत नियाजाई नाही। राज्यसभा रे ए संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर जणाइले पेट्रोलियम और प्राकृतिक वाष्प राष्ट्रमंत्री सुरेश गोपी। ब्रिटेनर नूतन प्रधानमंत्री भाव आज दायित्व ग्रहण कले आंडी बर्नहम। पवित्र हेरापंचमी तिथि आज पुरी में अनुष्ठित होउछि विशेष नीतिकांति। आसंता सकाळ धूप सरिबा परे तीनि रथर दक्षिण मोड़ नहीं विजय कराजिबो आज्ञामाळ। राज्य में स्वल्प वृष्टिपात जो सृष्टि परिस्थिति नहीं उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतारे उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित। खरीफ चासरे कौनसी असुविधा न होबापई आलोचना। राज्य में स्नातक महाविद्यालय गुडिक नामलेखा लागि आज प्रकाश पाई द्वितीय पर्याय मेधा तालिका। आसंता गुरुवार पर्यंत नाम लेखाई पारे छात्र छात्री। राज्य में सार संकट दूर करने डीएपी और यूरिया विकल्प को प्रोत्साहन देवाला सरकार निष्पत्ति। जिलापा पत्र लिखिले कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग सचिव सचिन रामचंद्र यादव। एवं ओडिशा उत्तर भाग और पार्श्वर्ती अंचल चलित सप्ताह पुणि थे घूर्णिबलय सृष्टि संभावना। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा होगा नहीं 20 जिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी।

0: କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत

0: मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और राजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर

0: फिर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक, दिल से दिल तक रे शो चली छि अभुला स्मृति। अभुला स्मृति रे आज सुनि छि छोट छुआ मानन को नै किछि सुंदर पुरणा फिल्म रो गीत। नेक्स्ट गीत टी बूट पॉलिश फिल्म रो गाई छंती मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा

0: में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्चस्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।
4: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मुं लहरिका पटनायक। मौसुमी अधिवेशनर प्रथम दिन में नीट प्रश्नपत्र मामला एवं अन्य प्रसंगक नहीं संसदर विरोधी हट्टगोल जोगु आसंताकाली पर्यंत उभय गृह मुलतवी। भुवनेश्वर समेत देशर 5 स्थान में वृत्तिगत प्रशिक्षण संपर्कित जातीय उत्कर्ष केन्द्र हेब प्रतिष्ठा। लोकसभा सूचना देले विभागीय राष्ट्रमंत्री डॉ सुकांत मजुमदार। पवित्र हेरा पंचमी तिथि श्रीक्षेत्र पुरी में अनुष्ठित होउछि विशेष नीतिकांति। आसंताकाली सकाळ धूप सरिबा परे 3 रथर दक्षिण मोड़ नहीं विजय कराजिबा आज्ञामाळ। ପୁରୀଠାରେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କଟକର ଅନିଲ ଦାସ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ଅଶୋକ ସୁବାରେ ରାଇକରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉଭୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

महाबाहु मु तुम भक्त जपे तुम नाम कृपा कर महाबाहु ए अधम भक्तर भक्ति को ग्रहण करी कृपा कर कृपा सिंधु उद्धार कर ए भक्त को तुमर दयार सागर तुमे प्रभुंकर नाम ने प्रभु श्री जगन्नाथंकर पाद पद्मरे निजर भक्ति अर्घ्य अर्पण करिबा।

जय जय जगन्नाथ महाबाहु तुम्हें मोर माता पिता भी तुम्हें तुम्हें मोर गति मुक्तिर साथी तुम्हें मोर बंधु तुम्हें ही आशा जीवन नार तुम्हें ही मोर नाओरी प्रभु अंधकार रे मोर दीप शिखा तुम्हें ही महाबाहु।

आहे महाबाहु एतिकी करुणा हेउ तुमे ही नुआ स्वर सकाळर प्रभु संध्यार मधु आळती तुमे विश्व कारीगर तुमे परा प्रभु गढ़ी अछय जगत को तुमे दया कले ए भव सागर हे जीवी मु उद्धार दया कर महाबाहु कृपा कर।

श्रोता बंधु शुणुले आपर भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली बर्तमान आम परवर्ती कार्यक्रम अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 100तम अध्याय आसंत सुनिबा।

मैत्रेय मुनि विदुर को सतींकर यज्ञ देखा जावा विषय कहते शिव जानते सती पिता घर को गले स्वामी निंदा सही नपारी जीवन हर शिवं बारण सत्वे सती यज्ञ देखा गले सेठारे शिवंकर यज्ञ भाग न देखि ओ पितांकर स्वामी निंदा शुणी क्रोधरे अस्थिर होई यज्ञानळरे निजकु विसर्जन देइदेले। नारदंक ठारु पत्नीक मृत्यु संवाद शुणी शिव क्रोधरे प्रज्वलित होई जटा छिंडाई पकाई दियंते सेथिरु जन्म नेले वीरभद्र।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक होयल आपरा मानक साथी सो आजिरो दिनरे बहुत ही खास काहे कि ना आजिरो दिनरे बहुत किछि रहि छे भारतीय बैंक जातीयकरण दिवस भाबरे आजिरो दिनटि को आमे पालन करू छे बैंक नेशनलाइजेशन डे भाबरे हेथिला घटना या भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति नै देशर 14टि बड बेसरकारी बैंक रो जातीयकरण करथिले आउ एटा आम भारतीय अर्थनीति इतिहास रे गोटे बड़ माइल खुंट साजिथिला तेनु करी आजिर दिनटि को सेइथि पई बैंक नेशनलाइजेशन डे भाबरे पालन करा जाउछि एवं ता सहित आजिर दिनरे हि 1848 आजिर दिनरे अमेरिकार न्यूयॉर्क रे महिला मानकर समान अधिकार पई विश्वर प्रथम महिला अधिकार सम्मेलनी माने वुमेन्स राइट कन्वेंशन आरंभ हेथिला रे फिनलैंड रो हेलसिंकी ठारे 15तम ओलंपिक्स एवं 1980 रूस रो मस्को ठारे 22तम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स क्रीडा आरंभ करा जायथिला माने हेइथिला आरंभ हेइथिला ता सहित 1900 रे फ्रांस रो राजधानी पेरिस रे विश्व रो अन्यतम प्रसिद्ध आ पुरुणा मेट्रो रेल सेवा प्रथम थर पई जनसाधारण मानक पई आज ही खोला जायथिला तबे आजर दिन रे बहुत खास आज दिन रो इतिहास रे बहुत किछि रही छि जहां मु आपन मानक सहित शेयर करिली तबे आज दिन रो ए सुंदर कहानी आपन निजो पई लेखंतु एवं आपनका कहानी सबटा सुंदर हो बेस्ट हो से विशेष सहित अगटे लवली ट्रैक आपन मानक पई

0: आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

प्रकार परिस्थिति आम सामना को आसी थाए आउ सब समय रे ना देखिबे किछि परिस्थिति रे आपण उत्तर देबा रो आवश्यक ही हेइ न थाए किछि परिस्थिति रे आपण निरवता रहिले ही से परिस्थिति रा समाधान आपण को मिलि जाय थाए नीरव रहिबा जदि केही भाबुथिबे कि एडा हमर दुर्बलता रो परिचय बिल्कुल भी नुह काहे कि ना निरवता गोटे दुर्बलतार परिचय नुहे बरं गोटे परिस्थिति को बुझिकी निज भावना को नियंत्रण करिबा र गोटे बहुत सुंदर उपाय जहाद्वारा अनेक गुड़िए समस्या समाधान हो जाए।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदा रो 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाई थिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाई छि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
2: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
3: हर घर सूर्य घर
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: सुंदर सुंदर मीठा मीठा गीत सहित आपण मैंने शुणुंट 100.4 आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक दिल सी दिल टाक कोयल आपण साथी रे अछि आउ आजि वर्षा दिन रो किछि मीठा स्मृति आमे साउंडुछे आपण पिला दिन रो किछि मीठा मीठा स्मृति अछि आजि आपण पाखरे जोटा आपण मो सहित बांटिबे नंबर टी आउ थरे कहि दउछि 0671203153 तबे आपण जीवन रे केबे एमती माने पिला दिन रो किछि स्मृति स्कूल बा कॉलेज रो किछि स्मृति वर्षा को नहीं कि तहा आज आप मो सहित बांटि पारे गोटे कल आज कल टी नहीं जावा हेलो
1: नमस्कार गुड मॉर्निंग
0: नमस्कार गुड मॉर्निंग किए कहते
1: बामदेव कृषि
0: कहते
1: बहुत भल
0: अच्छी फोन कर मैंने बढ़िया स्मृति कह अच्छे स्मृति
1: हाँ निश्चिंत पादिन स्मृति अच्छी स्कूल समय स्मृति जोटा कि आज पर्यटन भी मोर मन अच्छी खाली गोटे ना अनेक स्मृति अच्छी खाली गोटे स्मृति मुझे बोधे मुझे अष्टम कि नवम श्रेणी पढ़ु थाए आम स्कूल छुट्टी पर पुणी आम से पाखापाखि स्कूल पाखापाखि जगह ट्यूशन हो तो मोर जन सांग ट्यूशन स्कूल सरला ट्यूशन नहीं फेर घर पाख 5 किलोमीटर अच्छी तो वर्षा आरंभ हो गला एमती वर्षा मैंने चारिड़ पूरा एकदम कला अंधार कर वर्षा एकदम प्रबल मात्रा पाखे गोटे मठ थाए प्रभु जगन्नाथ को पूजा पाती गांव पाखे से मठ से आम रहीगल तो वर्षा छाड़ब घर को जीव बोली आउ समय मान वर्षा टा लग रहा छाड़े जावा एकदम मानने सन्ध्या रात 7 8 एमती

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजनार यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: ए सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
3: रेनबो एसएमएस रे आज परवर्ती मेसेज टी अच्छी नारायण प्रधान कर बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा।

0: गंजाम रु लेखुछंती मेरी जीवन साथी गीत सुनिया पाई चाहिछंती एक दूजे के लिए चलचित्र रु।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। वो इंग्लिश।

Rainbow SMS Day Ajira Paravarti message T Vartamana Chimo Pakre. Good morning, ma'am. Jai Jagannath. संग्राम चलचित्र रुगडे गीत सुनिया पई चाहिचंदी दुर्गा प्रसाद दळई परेश्वर शाही जोब्रा कॉलेज स्क्वायर कटक रूम निश्चय सुनै देबी संग्राम चलचित्र रो जो गीतटी आपण रिक्वेस्ट करचंदी सेई गीतटी त हम पखरे अवेलेबल नै किंतु आउ गटी गीत मु सेई चलचित्र रु निश्चय आपण को सुनै देबी आशा करछि आपण को निश्चय भल लागिवो आजर परवर्ती मेसेज टी को लेखि छंती असरला पिचुकुली खोरदारु मंजुवाला पात्र भक्ति प्रसाद प्रभात कुमार सुनिया पई चाहिचंती समय ओडिया चलचित्र रे प्रिया मोरो

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यम प्राय 60 कोटि लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंते योग्य हिताधिकारी एपर्यंत 12 कोटि रु ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जायछि जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटि टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु

रेनबो एसएमएस रे आजिर परवर्ती मेसेज टी वर्तमान अछि मो पखरे एवं ए मेसेज टी को बहुत दूर रो माने दिल्ली मोतीनगर रो लेखि छंती हमर आप माध्यम रे से माने सुनु छंती रेडियो लेखि छंती गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ गुटे सुंदर गीत से सुनिया पई चाहि छंती हम हे राही प्यार के चलचित्र रो बॉम्बे से गए पुना ए गीत टी को मो आपन को पई प्ले कर देबी लेखि छंती अनिल कवित मानसी गौरव अरोड़ा सुभाष ए समस्त मिसिक लेखिछंदी मेसेज टी मु निश्चय आपन को पई गीत टी प्ले कर देबी सुनु थांतु एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आज जीरो परवर्ती मेसेज टी अछि औखुमा ढेंकानाल रो रमेश चंद्रंकर सुनिबा पई चाहिछंदी से गोटे सुंदर गीत एवं गीत टी अछि अमर बहुत ही सुंदर गीत टी गीतटी अछि साथी चलचित्र रु हुई आखे नाम आपण को पई आपण को पसंद रे गीत प्ले करछि एंजॉय करंतु

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟବକ୍ସ ନମ୍ବର 111 ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए, अपनी जानकारी उन विषयों के बारे में बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा उल्लेख किए गए उस विषय को, उन व्यक्तियों को, उन हस्तियों को हम और समझते हैं, उनके कार्य के बारे में हम और जानते हैं और इस तरह हम गहरे से जुड़ते हैं अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति को थोड़ा और अपनाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल का उल्लेख किया जो अनुकरणीय है, जो बेहद प्रेरित करती है। किस तरह से हमारी जो परंपरागत शैक्षणिक विधियां थी, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कर रहा है, उन्हें प्रचलित कर रहा है और किस तरह से हमारे युवाओं को एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें लगातार तैयार करता रहेगा, हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय, शास्त्रार्थ की परंपरा और साथ ही आधुनिक भारत के जो बड़े बदलाव हैं उनका उल्लेख किया है।
2: साथियों, एक टेक्नोलॉजी का युग है, हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय

0: भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है, और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला

0: प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: तो साथियों, सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की सराहना की है। और आइए अब मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे विशेषज्ञों से, जिनके माध्यम से हम इस विषय के बारे में आज और जानेंगे। आज हमें समय दिया है, हमारे स्टूडियो में आए हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा जी, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं इलाहाबाद से। प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद नीलम जी।
1: मैं सबसे पहले श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी के उद्गार हमने यहाँ पर सुने, उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो नए लगते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं और हमें लगातार वो प्रेरित करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रार्थ की जिस परंपरा का उल्लेख किया है, वो असल में क्या है?
2: नीलम जी, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
1: जी,
2: जिन्होंने अपने मन की बात में हमारी पारंपरिक शास्त्र विरासत की एक बहुत बड़ा सराहना की उन्होंने
1: जी।
2: भारत देश में हमेशा संवाद के लिए बहुत बड़ा स्थान रहा है। शास्त्रार्थ यानी संवाद
1: जी,
2: वाद कथा इसको हम बोलते हैं। जब किसी विषय पर निर्णय करना हो, अनेक मत हो, उन सारे मतों को सामने रखते हुए एक मध्यस्थ को बीच में रख के शास्त्रार्थ करते हैं, अपने अपने मत को सब रखते हैं, उसके बाद जो संवाद के बाद जो निर्णय होता है वो मध्यस्थ उस निर्णय को बताते हैं। तो इस व्यवस्था को हमने शास्त्रार्थ नाम दिया है
1: जी।
2: हमारी परंपरा में इसको वाक्यार्थ भी बोलते हैं, वादार्थ भी बोलते हैं, और वाद कथा भी, संवाद भी, ये समानार्थक शब्द है। हमारी शास्त्रीय परंपरा में आज भी वो जीवित परंपरा है। आज भी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद भाष्य और द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत की परंपरा में द्वैत और अद्वैत के अनेक विमतियों को निश्चय करने के लिए शास्त्रार्थ आज भी करते हैं
1: जी।
2: लेकिन ये परंपरा केवल एक पारंपरिक व्यवस्था का अंग रहा है। इसको पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शास्त्रार्थ परंपरा को उज्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को सराहना की है। उसके द्वारा उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे राष्ट्र का एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का अंग के रूप में उन्होंने स्वागत किया है, इसलिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी। डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदलते दौर में बहुत सारी नई चीजें हम अपने आसपास लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं और युवाओं के जीवन का ये हिस्सा भी बनते जा रहे हैं, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही एक चुनौती ये भी है कि हम अगर अपने पांडुलिपियों की बात करते हैं, अगर हम अपने उपनिषदों, शास्त्रों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करें, अपने वेदों की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि AI इसमें किसी तरह सहायक सिद्ध हो सकती है, या ये एक चुनौती है जो हमारे इन प्राचीन जो संपदा है इसका ह्रास करेगी?
4: जी नीलम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडुलिपि से संबंधित। देखिए, भारत की जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जो हमारी बौद्धिक जो परंपरा है, उसका जो संरक्षण है वह तो पांडुलिपियों में संरक्षित है ही
1: जी।
4: हम जानते हैं कि जो पांडुलिपियां हैं केवल मात्र हाथ से लिखे हुए कोई पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की अक्षुण जीवन स्मृति वो है, और उनको ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर, वस्त्रों पर लिखा गया है, और आज भी उनसे जो ज्ञान संपदा का जो विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसके द्वारा भावी पीढ़ियों को उस सुरक्षित ज्ञान के संवहन के लिए हम निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि किस प्रकार से इस ज्ञान परंपरा को और अधिक दृढ़ भूमिका दे सकती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो कि धुंधली हैं या जो क्षतिग्रस्त हैं, उन पांडुलिपियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो डिजिटल रिस्टोरेशन की जो बात है वो आसानी से हो सकती है, जिसमें AI जो है इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के द्वारा उन पांडुलिपियों को डिसाइफर कर सकता है, और अनेक लिपियों में जैसे कि ब्राह्मी है, शारदा है, सिद्धम है, या नंदीनागरी है, या द्रविडियन भाषाओं में या द्रविडियन लिपियों में जो लिखी गई पांडुलिपियां हैं, उनको डिसाइफर करके स्वचालित पहचान के द्वारा एक डिजिटल पाठ तैयार कर सकता है, जिससे कि

0: लाखों पृष्ठों का जो है डिजिटलाइज वर्जन हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकता है। तो इस दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित रूप से पांडुलिपियों के संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग के लिए बहुत सहायक हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता में जो ज्ञान भारतम जैसा एक मिशन जो स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अभी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स देश भर से जो है संग्रहित हुई हैं, और जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं या जो भाषा विज्ञान पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक अनुपम धरोहर है अनुसंधान के लिए। और इसी से देखिए हमारा नवाचार विस्तृत होगा और भारत की ज्ञान संपदा विश्व भर में प्रसारित होगी।
1: जी, तो इस तरह से AI सहायक है। जी,
0: निश्चित रूप से।
1: जी, मैं प्रेम शंकर जी आपसे अब जानना चाहूंगी, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो विद्यालयों में हम सबका जुड़ाव तो रहा ही है, आरंभिक चरण में, अपनी शिक्षा के आरंभिक चरण में हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ सातवीं, आठवीं, नवीं कक्षा के बाद छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो क्या ये केवल संस्कृत भाषा से जुड़ा है, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या मूल अवधारणा रही है, जो प्राचीन साक्ष्य है, क्या इस बारे में कुछ मिलते हैं हमें?
2: असल में शास्त्रार्थ अपनी बहुत प्राचीन परंपरा का एक अंग रहा है हमारे।
1: जी,
2: जिसमें शास्त्र कहते हैं ऐसा ज्ञान जो कि प्रमाणित हो, जो कि ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता हो, वो ज्ञान। उस ज्ञान के कहीं अगर विरोधाभास होते हैं तो उसके संबंध में लोग अपना शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना व्याख्यान उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि कुलपति जी ने थोड़ी पूर्व में बताया था, उसके बाद जो सर्वोत्तम निष्कर्ष होता है, सर्वोत्तम मत जो होता है या तर्क संपन्न जो होता है, उस पर एक निर्णय हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा, शास्त्रीय परंपरा ही है एक तरह से, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और बल्कि कहना चाहिए कि ये, मैं तो ये मानता हूँ कि गांवों में जो पंचायत जो चला करती थी वो भी उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें अनेक लोग बैठते थे, कम से कम पांच तो बैठते ही थे। लेकिन पंचायत में पांच के अतिरिक्त ये नहीं था कि वो छठा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वो एक खुला मंच होता था गांव में भी, और अपनी अपनी बात रखते थे और सत्य के निर्णय पर सब एक मत होकर के पहुंच के उसको पूरा समाज उसको मान्यता देता था। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है, और जो आज भी हम लोकतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में, हम उसका आज भी पल्लवन और पुष्पन देख रहे हैं।
1: जी,
2: और ये शास्त्रार्थ सदैव जीवित रहेगा। और ये प्रधानमंत्री जी के जो मुख से निस्सृत हुआ है,
1: जी,
2: उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि अब इसके विशेष रूप से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रार्थना की है कि वो भी AI और उसके माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, उस तरह से अन्य विश्वविद्यालय भी उस तरह का अपना योगदान कर रहे हैं।
1: जी, यानी केवल भाषा से इसका संबंध नहीं है, शास्त्रार्थ का मतलब है किसी विषय के बारे में अपना मत रखना और जो सर्वोत्तम पद्धति है उसे स्वीकार करना।
2: जी,
1: मुझे याद आ रहा है कि जब हम कॉलेज में थे तब भी हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर जब कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रतिस्पर्धाएं होती थी, तो डिबेट भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती थी, और एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में हम बोलते थे, फिर उसमें विजेता विद्यार्थी जो है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसी परंपरा को जीवन किया जा रहा था।
3: लेकिन उसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रार्थ व्यवस्था में एक पद्धति विकसित की गई है।
1: जी।
3: आज जो केवल डिबेट होता है उसमें केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में तो अपनापन रखते हैं।
1: जी।
3: ये युक्ति के आधार पर निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे प्रस्तुति रखनी है, जैसे आज के कोर्ट में, न्यायालय में कोई पद्धति है, उसी तरह का प्राचीन पद्धति है, उसको शास्त्रार्थ पद्धति बोलते हैं। उस पद्धति में यदि किसी के मत हराना है, उसको हराना नहीं माना जाता था, उस मत के ऊपर उनको आक्षेप जितना करना है, कैसे करना है, प्रमाण क्या देना है, युक्ति क्या देनी है, युक्ति का बल कितना है, प्रमाण का बल कितना है, ये सारा निर्णय का अंग होता था। तो निर्णायक भी उसको ठीक से जानते थे, और जो पूर्व पक्ष के व्यक्ति, उत्तर पक्ष के व्यक्ति अपने मत को जब स्वीकार करते थे दूसरे मत को,
1: जी,
3: तो एक स्पर्धा नहीं थी, ये सत्यान्वेषण का मार्ग था।
1: जी, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी खोज सब मिलकर कर रहे हैं।
3: जी।
1: और इसमें मत भेद हो सकता था, मन भेद नहीं था, व्यक्ति का सम्मान जो है वो बना रहता था। जी, यहाँ सर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी।

0: लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना मैं श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: संस्कृत के गाने मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: वैसे हिंदी के गाना भी सुनते हैं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के गाने में एक जो पद्य है बहुत सुंदर पद्य है जो हमारे नवाचार को अपने आप में एक प्रतिबिंबित करता है। मुझे लगता है कि संस्कृत गानों को भी हमारे युवा लोग सुनना चाहिए। इस दृष्टि से एक इस गाने का इस भाग को मैं आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे।

0: इन मीठे से शब्दों के साथ ही जो गूढ़ अर्थ है इनका, उन्हें स्वीकार करने के साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन शास्त्रार्थ पद्धति की और साथ ही जो नई तकनीक हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ी है उनकी बात भी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, हमारे साथ हैं श्री प्रेम शंकर शर्मा, आप जाने माने संस्कृत विद्वान हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि एआई को हम अपना तो रहे हैं और हमारे युवा जो हैं उनका काम बहुत हद तक अब डिपेंड करता है एआई पर, वो उसकी मदद लेते हैं अपने काम में, लेकिन एक ये चुनौती भी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सकें, तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या भूमिका निभा सकती है, हमारे विद्यालय क्या ऐसा कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा क्या कर सकता है कि हमारी रचनात्मकता जो है वो भी बची रहे और साथ ही नवाचार को लेकर हम आगे बढ़ें।
1: देखिए मानव की इस यात्रा में जब नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं उसमें हम प्रवेश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज रहा है। जैसे हमारे हाथों से जो करते थे वो यंत्र बन गए तो ये भी चैलेंज रहा है
0: जी।
1: और जब हम पादचरण के द्वारा यात्रा करते थे वाहन आ गए हमारे, उसके बारे में भी चर्चा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ मानव यात्रा का हमेशा एक संघर्ष दिखता है, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, मानव कौशलता का विकास का एक भाग है वो। हम टेक्नोलॉजी छोड़ भी नहीं सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने के बाद मानव अपने आप को दूसरे ढंग से अपना कौशल का विस्तार करेगा
0: जी,
1: बुद्धि का विस्तार करेगा। लगता है शुरुआत में ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जिसके साथ हम स्नेह करेंगे उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे, साथ ही हम अपनापन को मानव ने कभी छोड़ा नहीं आज तक। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एआई हमारे साथ रहेगी। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, क्या आज भी मानव निर्मित सुंदर कलाकृतियों के बारे में कोई प्रश्न है क्या? डिजिटल टेक्नोलॉजी में उसका एक नयापन मिला है
0: जी।
1: आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कई चित्रकार अच्छे अच्छे नए चित्र दिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी आया है साउंड का, अकोस्टिक का, उसके साथ अच्छे गाने भी आए हैं
0: जी।
1: और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी मानव का जो कलात्मकता है और प्रतिभा है उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अनुकूल बनेंगे, कभी विरोधी नहीं बनेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक जो है उसको सीखने का और उसके साथ जीने का मन करना होगा और उसका संयम के साथ उपयोग करना, क्योंकि मैं मानता हूं एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी हमारे सामने जो आया है बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको ब्रह्म राक्षस मानता हूँ। यदि ब्रह्म राक्षस को आप अपने वश में रखे
0: जी,
1: बहुत ही काम करेगा वो आपके लिए।
0: हाँ।
1: लेकिन ब्रह्म राक्षस यदि आपका वश में नहीं है आपको खा जाएगा
0: जी।
1: तो सोचना पड़ेगा उसका उपयोग करने से पहले। तो इस दृष्टि से मुझे आज ये वरदान है
0: जी।
1: हम ऐसा युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी सभ्यता ने इसको देखा नहीं था। वंडरफुल
0: जी,
1: इसके साथ करना चाहिए।
0: और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके साथ एक सामंजस्य भी होगा, उसके साथ हम जीना भी सीखेंगे और हमारी बुद्धि का विस्तार होगा इससे, अगर हम चाहें तो। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

0: डेटा साइंस में बीटेक शुरू करने की पहल की है, तो आप शिक्षा व्यवस्था में इसे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानते हैं, ऐसा क्यों किया गया है?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खासकर उल्लेख किया है, इसलिए नहीं है कि बीटेक भारत में पहली बार शुरू हो रहा है।
0: जी,
1: बीटेक पाठ्यक्रम भारत में कई संस्थानों में है।
0: जी,
1: लेकिन उसके पीछे रहा हुआ उद्देश्य के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उल्लेख किया है। वो उल्लेख ये है कि तकनीकी व्यवस्था को हमारी भाषाओं के साथ, हमारी प्राचीन ज्ञान धरोहर के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीटेक एआई और डेटा साइंस ये पाठ्यक्रम ही क्रांतिकारी नहीं है अपने आप में, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ, संस्कृत के साथ जोड़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है।
0: जी,
1: ये कार्य कोई आईआईटी नहीं कर रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक क्षेत्र से बाहर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास, साथ ही भारतीय भाषाओं के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य को देखा है।
0: जी,
1: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस विशेषता को आपने देखा और उल्लेख किया, मन की बात के द्वारा पूरे दुनिया को इस विषय को पहुंचा दिया।
0: जी,
1: ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री उसको उल्लेख करते हैं, संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है, एक ज्ञान की धारा है, उसको जीवन के सभी अंगों में सभी डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आवश्यकता है। उसको मानते हुए उसमें हमने एक प्रयास किया है, हमने आधुनिक तंत्र ज्ञान के साथ जोड़ा है, इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय विधि शास्त्र के साथ जोड़ा है, आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और सिविल सर्विस स्टडीज के साथ जोड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में संस्कृत को जोड़ने का प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है, उस दिशा में ये भी एक प्रयास है बीटेक कार्यक्रम, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को केवल संस्कृत नहीं सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में हम जोड़ना चाहते हैं। इसमें दोनों तरह के छात्रों को भाग लेना होगा, जिसमें संस्कृत और भारतीय भाषा जानते हो, साथ में टेक्नोलॉजी जानते हो। आने वाले दिनों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो संस्कृत और भारतीय भाषा आश्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे।
0: जी,
1: उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का बहुत बड़ा एक उद्यम हम जो शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे शिक्षा मंत्रालय का समर्थन है, पूरे भारत सरकार का समर्थन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, और आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको आगे बढ़ाया है।
0: जी, तो ये आने वाले कल की तैयारी है। जी डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम दीक्षांत समारोह अक्सर सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये विद्यालय विश्वविद्यालयों में अब केवल डिग्री वितरण समारोह है। मैं आपसे हमारी शिक्षा परंपरा, भारतीय शिक्षा परंपरा में दीक्षांत समारोह का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या है, ये जानना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया नीलम जी आपने। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कि इतनी समृद्ध है, विशाल है, विराट है, उसमें उपनिषद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान से, भय से, अहंकार से और संकीर्णताओं से मुक्त करे। तो इसी की जो प्रबल भावना है वो हमारे दीक्षांत में हमें प्रकट होती है, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में जो दीक्षांत समारोह है वह केवल शिक्षा समाप्ति का कोई विशेष उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति नए दायित्वों के अध्यायों का एक शुभारंभ है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि दीक्षा के पूर्ण होने से जो विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र, अनुशासन, सेवा और जो लोक मंगल के जो संस्कार हैं उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो वो वेद सहित, चतुर्वेद सहित षडंग की वो विद्या को प्राप्त करते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण होते हैं, राजनीति हो चाहे शिल्प शास्त्र उसमें प्रवीण होते हैं, और इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत वे समाज में जो प्रवेश करने की जो अनुमति है उसको गुरु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो आश्रम प्रवेश की भी अनुमति इसमें मिलती है। और विशेष रूप से दीक्षांत समारोह के संदर्भ में जब ये आयोजन किया जाता है समावर्तन संस्कार के उपरांत, तो तैतरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है वहां पर गुरु जो हैं वो शिष्य को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद, मातृदेवो भव पितृदेवो भव।

0: आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप देखिए कि जो हमारे देश की इतनी विस्तृत और इतनी समग्र शिक्षा विकास की जो पद्धति रही है, उसमें इतने सुंदर जो औपनिषदिक वचन है, जो वैदिक वचन है, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को कितना संगठित करते हैं और हमें कितनी सामाजिक संरचना को कितना अधिक वो सामंजस्यपूर्ण या समरसतापूर्ण युक्त बनाते हैं। और मेरा मानना है कि जो भारतीय जो दीक्षांत की जो दृष्टि है, उसमें शिक्षा का लक्ष्य केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन करना, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि वह व्यक्ति भी ऋषि, परमर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि की कोटि में अपने आप को रखे। तो ये एक आदर्श युक्त जीवन शैली जो हमें शिक्षा से मिलती है, उसी की ये एक मूल भावना हमें दीक्षांत समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें भी इसी भारतीय दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है, उससे राष्ट्र निर्माण का और जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण जो है वो अवसर है।
1: जी, महत्वपूर्ण अवसर है, और इसीलिए शायद इसमें दीक्षा शब्द जुड़ा है शिक्षा की बजाय, क्योंकि दीक्षा का अंत नहीं होता है। आप जितना गुरु का अनुसरण करते जाएंगे, वो दीक्षा और गहरी होती जाएगी।
0: जी,
1: बहुत अच्छा आपने इसका विवेचन किया है यहाँ पर। अब मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: एक बहुत ही मुझे प्रिय है एक गीत, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, जो कि हम तुम और वो फिल्म से है और जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने।
1: जी, और ये क्यों पसंद है आपको?
0: क्योंकि इसमें जो शब्दावली है वो संस्कृत परिनिष्ठित है, तो इस कारण से मुझे बहुत प्रिय है।
1: जी, इस गीत की विशेषता यही है। तो लीजिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना।
2: प्रिय

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति और समृद्ध भारतीय परंपराओं को जान रहे हैं, साथ ही हम ये भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवा शक्ति को और ऐसा क्या दिया जा सके कि वो जो ऊर्जा है उसे एक सही राह पर लेकर आगे बढ़े और हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमारे युवाओं का भी इसमें लगातार योगदान बना रहे। ये प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री जी ने दी है मन की बात में उल्लेख करके नालंदा विश्वविद्यालय का। मैं प्रेमशंकर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने और भी इसमें कई शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने पुरुष सूक्तम का जिक्र किया है, श्री सूक्तम है, श्री रुद्रम है, दुर्गा सूक्तम है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें ये समझाएं।
1: धन्यवाद नीलम जी। प्रधानमंत्री जी ने जो सूक्तम का जो उल्लेख किया है
0: जी,
1: वो हमारी प्राचीन जो वैदिक संपत्ति है
0: जी,
1: जो वेद हैं हमारे, जो मंत्र हैं, उनका उल्लेख करके, क्यों वही सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ है जो उत्तम बात कही गई हो, वो है सूक्त
0: जी।
1: ये हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो किस कारण से, देखिए एक तो है वेद, उनको श्रुति कहा जाता है
0: जी।
1: वो कहीं लिखे नहीं गए थे, वो केवल स्मृति के आधार पर सुन सुन करके लोगों ने याद किए थे, वो किसी के द्वारा रचे नहीं गए थे, इसीलिए वो, और वो सब के सब क्या है, वो मंत्र हैं
0: जी।
1: और मंत्र क्या है, वो मंत्र है, वो छंद हैं, क्योंकि छंद भी जो है वेदों का एक अंग है। छंदा पादौ तु वेदस्य
0: जी,
1: छंद जो है वेद का जो है वो चरण है, उनके बिना ज्ञान नहीं चल सकता, इसीलिए ये छंद। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे वेद सबको मंत्र याद रहे, उसका कारण ही ये है कि वो छंदोबद्ध थे, छंदों में थे, और वो छंदों को याद रखना आसान होता है और गद्य का याद, इसीलिए आप हमारे हिंदी के गीत जो हैं, चूंकि वो छंदोबद्ध हैं
0: जी,
1: इसलिए वो सबको हृदयंगम भी हो जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और इसीलिए इतना पुराना हमारा जो ये ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो छंदोबद्ध होने के कारण ये आज तक हमें प्राप्त होता है। इनमें से ही ये मंत्र हैं
0: जी,
1: जिनको श्री सूक्तम कहा गया है। ये श्री सूक्तम, ये श्री कहा गया लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम कहा गया नारायण, लक्ष्मी और नारायण
0: जी।
1: तो हमारे यहाँ तीन देव की कल्पना की गई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश
0: जी।
1: तो ये तीन जो वो हैं, तो तीन बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता, तो इनकी ये शक्ति रखते हैं, इनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो नारायण के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा भी गया तीनों परमात्मा एक ही है, लेकिन वो तीन रूपों में कार्य करता है। तो वो कैसे, रजो जुषे जन्मन सत्व व्रतये सितौ प्रजानाम प्रलय तमस्प्रसे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः
0: जी।
1: यानी परमात्मा जो है त्रिगुण स्वरूप है, उसमें तीनों शक्तियां हैं, यानी जन्म सृष्टि करने की और पालन करने की और संहार करने की, वो शक्ति संपन्न होने के कारण ये सब करता है
0: जी।
1: तो ये श्री सूक्तम जो लक्ष्मी जी का सूत्र है, और पुरुष सूक्तम जो है नारायण के सूत्र हैं, तो ये जो हैं ये प्रार्थना और स्तुतियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे रुद्र भगवान के जो हैं वो रुद्र सूक्तम है, देवी जो सूक्तम है वो देवी महात्म्य है
0: जी।
1: तो इस तरह से ये चूंकि मंत्र होने के कारण ये पठनीय रहते हैं और श्रवणीय भी रहते हैं और याद भी रहते हैं
0: जी,
1: और ये फल भी देते हैं
0: जी। तो स्तुति का माध्यम है ये।
1: हाँ, स्तुति के माध्यम है, क्योंकि मंत्र हमारे जो वेद मंत्र हैं ये सब परमात्मा की स्तुति के, प्रार्थना ही ज्यादातर वेदों का मुख्य अंग रही है, और मंत्रों का प्रमुख अंग प्रार्थना ही रही है, स्तुति ही रही है
0: जी। यानी हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्तम जो है वो विष्णु जी की आराधना का एक माध्यम है, श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की
1: जी,
0: और श्री रुद्रम जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है शिव जी को समर्पित है, और दुर्गा सूक्तम ये हम देवी की आराधना
1: जी का स्वरूप है
0: जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। मैं श्रीनिवास सर आपसे ये जानना चाहूंगी, अब हम अक्सर सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान पद्धति भी और हमारे जो प्राचीन संस्कृति है वो भी विश्व को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और हम वैश्विक जो पद्धतियां हैं उन्हें समाहित भी करते रहे हैं अपनी संस्कृतियों में, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुनिया हमें आश्चर्य से भी देखती है लेकिन प्रशंसा से

0: भी देखती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कौन सा वैश्विक आकर्षण है कि भाषा, भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक भिन्नताओं की सीमाओं को भी सहजता से पार कर जाता है। क्यों दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को इतना मानती है कि हमारी भाषा जो है वो आज विदेशों में पढ़ाई जा रही है। बहुत सारे देश हैं, संस्कृत वहां पर एक विषय है, वहां के बच्चे पढ़ते हैं और हमारी संस्कृति के बहुत सारे हिस्से, हमारे जीवन यापन के दिनचर्या की बहुत सारी जो पद्धतियां हैं वो भी उनके जीवन यापन का हिस्सा है।
1: नीलम जी, एक बहुत गहरा प्रश्न है ये
0: जी।
1: इसमें जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक आकर्षण का केंद्र रहा है, दुनिया में भारत की सभ्यता का विशेषता क्या है? वो यह है कि प्रकृति के साथ हमारा जीवन है, प्रकृति से दूर नहीं है हम, प्रकृति से विरुद्ध नहीं भी नहीं गए हैं। दूसरी बात, विश्व कल्याण के लिए सोचा गया है, भाव शुद्धि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग रहा है। विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ, विश्व शांति के लिए, देखिए आज भी भारत किसी देश के विरोध में कभी भी आक्रमण नहीं किया है
0: जी,
1: यह इतिहास का भाग रहा है। इतिहास में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है लेकिन भारत ने किसी देश के विरुद्ध में आक्रमण नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि पूरे वसुधैव भी हमारा कुटुंब है
0: जी।
1: परिवार में हम रखते हैं, इस स्नेह भाव से हमने जिया है, प्रकृति के साथ जिया है, पूरे विश्व के सभी के साथ सोदर भाव से जिया है, मित्रता के साथ जिया है और सभी के अच्छाइयों को हमने स्वागत किया है। अनुभद्रा कृतोयंतु विश्वतः, दुनिया के सभी जगह से सभी दिशाओं से हम अच्छे विचारों को आचारों को स्वागत किया है, हमने हमेशा सीखा है
0: जी।
1: इसलिए दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि हमारे जीवन पद्धति को दुनिया ने भारतीय सभ्यता को एक आदर्श मानकर अपने आप ये विश्व गुरुत्व दिया है। मुझे लगता है कि यही विशेषताएं हैं, भारत की सभ्यता का विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारे जीवन से अलग नहीं, हमारे जीवन ही एक सांस्कृतिक जीवन है
0: जी।
1: संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जब होता है तो संस्कृति नहीं होती है, वो विकृति हो जाती है। आज भी भारतीय जीवन पद्धति यदि देखेंगे वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमने भी कई देशों से, कई विदेशों से आचरण व्यवहार को लिया है लेकिन आज भी हमारा 3000 साल के बाद भी हमारी सभ्यता का जो अनेक शुद्ध आचरण बचते हैं, इसका कारण है हमने उससे बहुत दूर नहीं गए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कारण है, कभी भी हम रिजिड नहीं रहे हैं। हम किसी मत पर, हमारा मत नहीं है, हम एक जीवन का धर्म लिया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संस्कृति का और एक भाग है संस्कृत। हमने ये भी माना है कि हमारी भाषा के द्वारा हम संस्कृति हमने रिटेन किया है।
0: जी।
1: भाषा लुप्त, देखिए आज हमारी इतनी भाषाएं हैं लेकिन भारत एक रहा है। यूरोप में भाषाएं बदली हैं, संस्कृतियां बदली हैं, देश भी बदले हैं लेकिन भारत में इतनी भाषाओं के बावजूद, इतने आचरण के बावजूद, इतने मतों के बावजूद भारत एक रहा है। कारण क्योंकि यहाँ एक संस्कृति और एक विशुद्ध विचार जो विश्व कल्याण के हो, विश्व शांति के हो, तो यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है
0: जी। और हम बहुत ही गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी ये संस्कृति है जो सबसे पहले विश्व शांति की कामना करती है और हम वो संस्कृति है जहाँ हमारे श्लोक जो है, हमारे वेद पुराण हमें वनस्पति और पूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना करना भी सिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल है। तो बहुत अच्छे से आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है ये इसीलिए आकर्षक है क्योंकि इसमें सहज प्रवाह है और साथ ही विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना है जी। तो प्रेम शंकर जी, यहाँ मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: है प्रीत जहाँ की रीत सदा
0: जी,
2: मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारत का संदेश देने के लिए मनोज कुमार ने बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और बड़ा ही प्रेरक वो बन पड़ता है और विदेश में ये गाना हुआ है
0: इस वजह से आप सुनवाना चाहते हैं। जी, बहुत ही अच्छा सा गाना है, हम सभी सुनते हैं।
3: जब

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को जान रहे हैं, आधुनिकता क्या है उसे समझ रहे हैं और हमारे युवाओं को आज किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है ये भी हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आज जान रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो रहा और मन की बात का जो हिस्सा हमने सुना उसमें एक शब्द आया ब्रह्म कमल डोमिनिकाना, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
1: जी निश्चित रूप से नीलम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के विषय में बात की है वो स्पेनिश बोलने वाले लोगों का एक समूह है जो कि रिपब्लिकन डोमिनिकाना में है और विशेष रूप से ये स्पेनिश बोलते हैं और ये भारतीय संस्कृति से इतने अधिक अभिभूत हैं और इतने अधिक इन्होंने श्रद्धा दिखाई है भारतीय संस्कृति के प्रति जो कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और देखिए इसी कारण से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो है वो आज भी हमें जीवंत दिखाई देती है विदेशों में। और इस प्रकार जब एक ये छोटा सा दल जो कि ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के नाम से है तो उन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण मानवता की जो साझा विरासत है, उसको बहुत सुंदर प्रकार से पूरे विश्व में प्रख्यापित करने का एक महनीय कार्य किया है। और इनके संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि ये जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं उन शास्त्रों का ये जो है अनुसरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्ध मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्र भी वैदिक मंत्रों का ये पाठ करते हैं और विशेष रूप से दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य जैसे देवी स्तुति परक मंत्रों का ये पाठ करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत से दूर जो देश है जहाँ पर भारतीय संस्कृति बहुत देर में गई लेकिन यहाँ के लोगों ने अत्यंत ही भारत के प्रति सम्मान रखते हुए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को साझा विरासत के रूप में मानते हुए वसुधैव कुटुम्बकम का जो उन्होंने एक परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो सीमाओं से परे जाकर भी भारत को विश्व में जोड़ने की जो एक अद्भुत क्षमता दिखाई है उसके लिए ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वस्तुतः भारतीय जो कथाएं हैं जो कि मंत्रात्मक हैं, जो कि पौराणिक हैं, उनको मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में नहीं देखते हैं बल्कि वो इसको एक जीवंत भारतीय दर्शन के रूप में अपनाते हैं। जैसे कि दुर्गा सूक्तम जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और तैत्तिरीय आरण्यक में भी यह प्राप्त होता है, वहां पर विशेष रूप से ये बात उपस्थित होती है कि ये जो वास्तविक जो शत्रु हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और हिंसा हैं, ये अज्ञानात्मक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं इन्हीं को ही हमें इन सूक्तों के माध्यम से जो है समाप्त करना है और अपनी बाह्य जो है जगत में अपनी आंतरिक चेतना को प्रबल बनाना है और इन शत्रुओं पर जो हमें विजय प्राप्त करते हुए देवी की स्तुति के माध्यम से विवेक है साहस है करुणा है आत्मबल है धर्म की स्थापना करनी है। और इसी कारण से हम देखिए पूरे विश्व में ये कहने के लिए तत्पर होते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है, आध्यात्मिक संदेश देने वाला एक देश है और शक्ति की उपासना करने वाला एक देश है। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समय समय पर इस प्रकार के देश दुनिया में हो रहे भारतीय संस्कृति के प्रति कार्यों से हम सभी को अवगत कराते हैं और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में जो देव उपासना है देवी उपासना है प्रकृति उपासना है उसका परिचय हम सभी को विश्व भर में मिलता है।
0: जी और अगर हम देखें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा वो रहा है, हमने घर परिवार में इस तरह की चीजें देखी है, ऐसी परंपराएं देखी है, हमारे पर्वों पर हम वृक्ष पूजन करते हैं, हमारे किसी न किसी त्योहार से एक वृक्ष जुड़ा है, कभी वहां हमें दिया जलाना है कभी जल अर्पित करना है और प्राकृतिक उपादान जो है चंद्र की पूजा हो रही है सूर्य देव की पूजा हो रही है तो शायद ये भी हमें प्रकृति के प्रति आभारी बनाए रखने कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसे हम आधुनिकता कहते हैं इसमें हम ये चीजें कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम ये परंपराएं जो हैं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हम जब जिक्र करते हैं आधुनिकता का और हमारे युवाओं के पास अगर हम देखें तो एक सर ने कहा कि ब्रह्म राक्षस है हमारे पास में कि बहुत सारी तकनीक है और ग्लोबल सिटीजन अब हम

0: अपने आप को कहते हैं, हमारे पास तकनीक के माध्यम से सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं और बहुत सारे विकल्प भी हैं आगे बढ़ने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे युवा कैसे हम उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़े रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति की जानकारी तो दें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में भी जाकर पढ़ाई करें, वहां नौकरियां भी करें, हम चाहते हैं कि वो हमारी जीडीपी में एक अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वो हमें फॉरेन करेंसी भी जो है वो देश में भेजें, लेकिन इन सब के साथ कैसे हम अपने बच्चों को अपने पर्वों का महत्व समझाएं, अपनी सनातन संस्कृति जो है उसकी वैज्ञानिकता हम समझाएं। आप संस्कृत के विद्वान हैं लेकिन विज्ञान के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
1: नीलम जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में प्रश्न किया है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे युवाओं को, आजकल के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा से अवश्य जोड़ना होगा, क्योंकि ज्ञान का जो सर्वोत्तम पक्ष है वो संस्कृत में मौजूद है। संस्कृत ही हमारे जीवन को उस ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन बनाती है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागर्ध कश्चित् ब्रह्म। इस भारत देश के उपनिषदकार ने ये सबसे पहले कहा कि दूसरे की चीज को देख करके लालच मत करो, तो दूसरे की प्रगति को देख करके लालच मत करो, है ना। और ये भी तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा, यानी जो हमारे पास जो बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखो कि उसके लिए भी त्याग के साथ साथ आप भोग करो, मतलब त्याग भी करो। तो त्याग हमारे संस्कृति में बहुत, त्याग का बहुत महत्व रहा है, त्याग और तपस्या का। अगर इन चीजों से जुड़ना है तो संस्कृत को अपनाना होगा, क्योंकि ये सारे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो संस्कृति सिखाती है और कोई भाषा तो ये सिखाती नहीं है। तो अगर इसीलिए विश्व भी आज संस्कृत की शरण में जा रहा है, योग की शरण में जाता है। योग क्या है? एक दर्शन है, षट दर्शनों में से एक दर्शन है। तो हमारे ये दर्शन क्या है? ये छह दर्शन जो है ये सूक्त रूप में ज्ञान का एक माध्यम है
0: जी।
1: सूत्र दिए हुए, सूक्त दिए हुए, उनके माध्यम से योग दर्शन में कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करें वो पूरा साधन दिया हुआ है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान का सदुपयोग करने का, ये हमारा संस्कृत सिखाती है, हमारी भाषा सिखाती है, हमारा साहित्य सिखाता है। तो इससे संस्कृत से हम जुड़े रहेंगे। और संस्कृत में एक खूबी बहुत बड़ी है
0: जी,
1: कि ये संसार की ऐसी भाषा है संस्कृत जो कि सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट इसका व्याकरण है
0: जी,
1: और सर्वोत्तम इसकी लिपि है, और जो आप लिख रहे हैं वही आप पढ़ते हैं, उच्चारण भी बिल्कुल वही है, जैसे कोई भी एक नुक्ता भी इसमें व्यर्थ का नहीं होता है
0: जी।
1: अगर उसे हटा देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये वास्तव में पूरी तरह से वैज्ञानिक और ईश्वर प्रदत्त कहना चाहिए ये भाषा है संस्कृत
0: जी।
1: तो संस्कृत से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे भविष्य देश का और संसार का भी, संसार को भी जोड़ना पड़ेगा, संसार भी जुड़ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान जो मानवता का जो ज्ञान है
0: जी,
1: वो पशुत्व से ऊपर उठने का ज्ञान है जिसमें मानव बन सके और देव बन सके
0: जी,
1: तो बिना संस्कृत के वो संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे उपनिषदों में और वेद मंत्रों में वो व्याख्यात है, और कहीं किसी पुस्तक को आप ढूंढ लीजिए कहीं वो चीज आपको नहीं मिलेगी
0: जी। यानी संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, और सांस्कृतिक जागरण जो है उसका एक सूत्र हम कह सकते हैं जी। प्रोफेसर श्रीनिवास, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, हम जब सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहे हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिसमें हर नागरिक को एक भूमिका निभानी है, ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इसमें?
2: देखिये नीलम जी, विकसित भारत का निर्माण केवल एक अंग के विकास से नहीं होगा
0: जी,
2: उसमें बौद्धिक विकास भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, उसमें व्यक्तित्व विकसन भी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी आज की शिक्षा एक एकांग या एक मुखी विकास का बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं
0: जी,
2: वो संपूर्ण विकसित भारत का है। उसमें केवल शिक्षा से एक जॉब, जॉब से अर्थ, अर्थ से जीवन, ये नहीं है
0: जी।
2: सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। हमने एक मिसिंग पॉइंट आज के शिक्षा में हुई है, सुख का मूल क्या है? लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे अर्थ है, मनी है। मनी के मूल क्या है? जॉब है। जॉब के लिए क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम के क्या करना है? तैयारी करनी है।

0: जी
1: तो हमारी शिक्षा क्या हो गई है, जॉब के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के द्वारा जॉब करना है, जॉब से अर्थ मिलेगा, अर्थ से सुख मिलेगा, यहाँ बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि कौटिल्य ये कहता है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है, समाज में धर्म जब रहेगा तभी सुख मिलता है, सबके लिए सुख मिलेगा, स्वार्थ नहीं है
0: जी,
1: सबके लिए सुख। उसके बाद धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ चाहिए लेकिन केवल अर्थ से सुख नहीं मिलेगा, धर्म के द्वारा ही मिलेगा
0: जी।
1: तो आज दुनिया में मिसिंग लिंक को भारत को सिखाना है, इसका मतलब है विकसित भारत केवल अर्थ से विकसित भारत नहीं होगा, संसाधनों से विकसित भारत नहीं होगा, आध्यात्मिक समृद्ध और संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर जब होगा तभी विकसित भारत होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता भी है, समृद्धि भी है और आध्यात्मिकता भी है
0: जी।
1: तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तीनों का समावेश होना चाहिए। हम केवल ज्ञान की बात करते हैं और सीधा अर्थ से व्यवस्था से जुड़ते हैं, नहीं, आज हमें आध्यात्मिकता को हमारी भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी सिखाना है
0: जी।
1: तो विश्वविद्यालयों का ये दायित्व है, तंत्र ज्ञान मात्र नहीं, साइंस मात्र नहीं, अपितु आध्यात्मिकता और भारतीय विद्या के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित ज्ञान व्यवस्था, तद्वारा अर्थव्यवस्था
0: जी।
1: तो नॉलेज इकोनॉमी जब बोलते हैं केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी नहीं है वो
0: जी।
1: वो आध्यात्मिकता के साथ, धर्म के साथ और साथ ही हमारे नागरिक दायित्व के साथ, हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर जब आत्मनिर्भर व्यवस्था निर्माण करेंगे तभी विकसित भारत होगा
0: जी।
1: तो ये सारे दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा यानी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान यानी शिक्षक
0: जी,
1: चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का शिक्षक हो, संशोधक हो, सबका दायित्व शिक्षक पर है, शिक्षा संस्थानों पर है। हमारा दायित्व निभाने के लिए आज के नई भारत के, विकसित भारत के लिए जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसको सम्यक रूप से समीचीन व्यवस्था के साथ हम यदि उसका अनुष्ठान करेंगे तब विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा भी होगी
0: जी। यानी सब कुछ साथ लेकर हमें बढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वो किसी एक क्षेत्र या एक अंग का विकास नहीं है, वो सर्वांगीण विकास है देश का, और इसमें हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही हमारे युवा भी, हमारे छात्र भी। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि विदेशों में जो भारतीय बसते हैं वो भी, और जिन विदेशियों के हृदय में भारत बसता है वो भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज पोस्टबॉक्स नंबर 111 में हमने बात की नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल की, और साथ ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो रहे बदलावों की, आधुनिक चुनौतियों की, लेकिन उनके साथ ही समाधानों की भी हमने बात की। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जिनके माध्यम से हमने विषयों को और गहराई से समझा है। प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी, आप माननीय कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए
1: धन्यवाद।
0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री प्रेम शंकर शर्मा रहे, जाने माने संस्कृत विद्वान, आप साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, पूर्व में पीसीएस अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के रूप में आप इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुए, और आज इस कार्यक्रम में आपने हमसे साझा की संस्कृत भाषा की विशेषताएं, साथ ही ये भी कि किस प्रकार से हम अपने युवाओं को इनसे जोड़कर रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
2: नीलम जी शुक्रिया।
0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जोशी, आप सहायक आचार्य संस्कृत विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: आपका भी हृदय से धन्यवाद।
0: आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और ये कहते हुए कि हम हमेशा याद रखें संस्कृत केवल भाषा नहीं, चरित्र निर्माण का एक माध्यम है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक सूत्र है, ये हम याद रखें। मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ और संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
5: सुनते पोस्टबॉक्स नंबर 111 रिले करी प्रचार करिलो आकाशवाणी दिल्ली।

टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निजो छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

सौ चली किसी कथा किसी गीत अच्छी मो नालीस आपण मान आमे समस्ते कहू था लाइफ टा फुल ऑफ बिजी किंतु से व्यस्तता भितरे लुची रहे केते केते छोट छोट खुशी जेमती के सकाळ रो फैमिली सह आमे से चा पीबा बरसरे माटी रो बासना पूर्ण बंधुक सह फोटो किंबा हठात सुनिथिबा मन पसंद रो गीत एहा ही होची जीवन रो रियल कलर आमे जदि ए छोट छोट मोमेंट को मन भरी उपभोग करिबा ताहाले प्रतिदिन होइ जीव कलरफुल

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जायथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जायछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकू पड़िबो। अधिक विवरणी पाई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जे कोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि ओ समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक ए दिल से दिल तक सफर रे मु अछि मोनालिसा आपण मनंको साथी रे ए माटी बिरतर माटी ए माटी रे प्रत्येक कणिकारे लुचि रहि जी साहसर कहानी जेतबेले देश प्रेमर कथा से सबुठ प्रथमे मन पड़ती आम वीर सतान मान से साहस त्याग अदम्य इच्छा शक्ति आज भी आम प्रेरणा से वीरतर गाथा को नहीं आरंभ करुछु मो देश